मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय

0: मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

0: अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए दलहनी फसलों की देखभाल विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, कृषि के लिए सुविधाओं का विकास हो रहा है, नई नई तकनीक विकसित हो रही है, हम सब गर्मी के सीजन में भी फसलें लेने लगे हैं। गर्मी यानी इस समय हम मुख्यतः दलहनी फसलों जिनमें कि उड़द और मूंग प्रमुख हैं, इनकी खेती करते हैं। आज हम इनकी देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह इसमें नमी बनाए रखें, किस तरह खरपतवारों को नष्ट करें और किस तरह इनमें जो कीड़े लगते हैं या बीमारियां लगती हैं उनको नियंत्रित करें। उड़द और मूंग की फसल में सिंचाई मिट्टी की किस्म एवं परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है। फिर भी सामान्य रूप से 3-4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई और फिर 10-15 दिन के अंतर पर अन्य सिंचाइयां करते रहना चाहिए। पहली सिंचाई बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहली सिंचाई जल्दी कर देने से जड़ों और ग्रंथियों का विकास समुचित ढंग से नहीं हो पाता। सिंचाई में एक बात का और ध्यान देना है, फूल आने से पहले एवं दाना पड़ते समय सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई का कार्य क्यारी बनाकर ही करना चाहिए और सिंचाई हल्की होनी चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बुआई के बाद और बीज के जमाव के पहले यानी बुआई के 2-3 दिन के अंदर पेंडीमेथिलीन 30% की 3.3 लीटर मात्रा या एलाक्लोर 50 ईसी की 3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि निकाई गुड़ाई से खरपतवारों को नष्ट करना चाहते हैं तो पहली सिंचाई के बाद एक निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए। अब कुछ बातें इन फसलों में फसल सुरक्षा के संबंध में। इनके पौधों की पत्तियों पर यदि धब्बे दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ समस्याएं हैं। ये धब्बे पीला चित्तवर्ण रोग या पत्रदाग बीमारी के हो सकते हैं। अगर पीला चित्तवर्ण रोग का प्रकोप होता है तो इसको फैलाने में एक सफ़ेद मक्खी सहायक होती है। अगर किसी पौधे

0: इस तरह की बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ करके उनको जला देना चाहिए। और फिर सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल ओ डेमेटान 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या इंडोसल्फान 1.25 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही अगर 2% यूरिया का घोल भी इसमें मिला देते हैं तो इससे कीड़े भी नियंत्रित हो जाते हैं, बीमारी का प्रकोप नहीं होता और पौधा स्वस्थ रहता है। दूसरा जो बीमारी है, पत्तियों का धब्बा रोग है। पत्तियों पर गोलाई लिए हुए कोणीय धब्बे बनते हैं जिसमें बीज का भाग हल्के राख के रंग का तथा किनारा लाल बैंगनी रंग का हो जाता है। इस बीमारी से फसल की उपज बुरी तरह प्रभावित होती है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। अगर यह दवा उपलब्ध ना हो तो कार्बेंडाजिम का भी छिड़काव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए इसकी 500 ग्राम दवा की आवश्यकता होती है और 800 लीटर पानी की। इस फसल में थ्रिप्स कीड़े का भी प्रकोप होता है। इसके शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों एवं फूलों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा फूल गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल ओ डेमेटान 25 EC की 1 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे हरे रंग के फुदके कीड़ों का प्रकोप होता है जो कि पत्तियों से रस चूसते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए क्यूनालफास 25 EC की 1.25 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर दलहनी फसलों की देखभाल करनी चाहिए।
1: दलहनी फसलों की देखभाल, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। हे माँ भगवती, आप मेरे जीवन का सर्वस्व हैं। आप हर पल मेरे साथ ऐसे रहती हैं जैसे मेरी सांसें रहती हैं। माँ आपको प्रातः नमन।

ईश्वर तो हमारे बिना भी ईश्वर हैं, परंतु हम ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। उनके सिवा कोई भी हमारे आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता।

तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो बोझ देता है वही उसे उठाने के लिए कंधे भी देता है, इसलिए खुद पर विश्वास रखना ही ईश्वर पर विश्वास रखना है।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है। आज के गायक कलाकार थे संजय तलवार, हरिहरन और अनूप जलोटा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 129वीं कड़ी।

कुंभ की यात्रा मेरी हरिद्वार की दूसरी यात्रा थी। सन 1915 के मई महीने की 25 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। श्रद्धानंद जी की इच्छा थी कि मैं हरिद्वार में बसूं। कलकत्ते के कुछ मित्रों की सलाह वैद्यनाथ धाम में बसाने की थी। कुछ मित्रों का प्रबल आग्रह राजकोट में बसने का था, किंतु जब मैं अहमदाबाद से गुजरा तो बहुत से मित्रों ने अहमदाबाद पसंद करने को कहा और आश्रम का खर्च खुद ही उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोज देना भी कबूल किया। अहमदाबाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। ये भी धारणा थी कि चूंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहां अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा। साथ ही आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहां के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चाएं की, उनमें ये प्रश्न भी चर्चा का विषय बना। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई योग्य भाई आश्रम में भर्ती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भर्ती करूंगा। आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले कौन से रास्ते में पड़े हैं? यूं कहकर एक मित्र ने अपने मन का समाधान कर लिया और आखिर अहमदाबाद में बसने का निश्चय हुआ। मकानों की तलाश करते हुए कोचर में श्री जीवन लाल बैरिस्टर का मकान किराए पर लेने का निश्चय हुआ। श्री जीवन लाल मुझे अहमदाबाद में बसाने वालों में अग्रगण्य थे। तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का नाम क्या रखा जाए। मैंने मित्रों से सलाह की, कई नाम सामने आए, सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझाए गए। सेवाश्रम नाम मुझे पसंद था, पर उससे सेवा रीति का बोध नहीं होता था। तपोवन नामक पसंद किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यद्यपि मुझे तपश्चर्या प्रिय थी, फिर भी ये नाम बहुत भारी प्रतीत हुआ। हमें तो सत्य की पूजा, सत्य की शोध करनी थी, उसी का आग्रह रखना था, और दक्षिण अफ्रीका में मैंने जिस पद्धति का उपयोग किया था उसका परिचय भारतवर्ष को कराना था। ये देखना था कि उसकी शक्ति कहां तक व्यापक हो सकती है। इसलिए मैंने और साथियों ने सत्याग्रह आश्रम नाम पसंद किया। इस नाम से सेवा और सेवा की पद्धति का भाव सहज ही प्रकट होता है। आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी, अतः मैंने नियमवालिका तैयार करने के मित्रों की राय मान ली। बहुत सी सम्मतियों में से सर गुरदास बैनर्जी की सम्मति मुझे याद रह गई है। उन्हें नियमावली तो पसंद आई, पर उन्होंने सुझाया कि व्रतों में नम्रता के व्रत को स्थान देना चाहिए। उनके पत्र की ध्वनि ये थी कि हमारे युवक वर्ग में नम्रता की कमी है। यदि नम्रता के अभाव का अनुभव मैं जगह जगह करता था, फिर भी नम्रता को व्रतों में स्थान देने से नम्रता के नम्रता न रह जाने का भय लगता था। नम्रता का संपूर्ण अर्थ तो शून्यता है। शून्यता की प्राप्ति के लिए दूसरे व्रत हो सकते हैं। शून्यता मोक्ष की स्थिति है। मुमुक्ष अथवा सेवक के प्रत्येक कार्य में नम्रता अथवा निरभिमानता न हो तो वो मुमुक्ष नहीं है, सेवक नहीं है, वो स्वार्थी और अहंकारी है। आश्रम में इस समय लगभग 13 तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ 5 तमिल बालक आए थे और दूसरे यहां के थे। लगभग 25 स्त्री पुरुषों से आश्रम का आरंभ हुआ। सब एक रसोई में भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे मानो एक ही कुटुंब के हों।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन स्वर और प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।
1: एपिसोड

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे बांसुरी वादन, कलाकार होंगे पंडित रोनू मजुमदार। दिन 12:45 पर और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे एकल तबला वादन और कलाकार होंगे श्रुतिशील उद्धव। रात्रि 10:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। लोक संगीत के कार्यक्रमों में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर कलाकार होंगी शैल बाला सरकार। शैल बाला सरकार का ही गाया लोकगीत आप शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में ही किसान भाई सुनेंगे सब्जियों में कीट नियंत्रण की जैविक विधि विषय पर डॉक्टर संदीप कुमार से की गई बातचीत। शाम 5:15 पर युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार समाचार और साथ ही गीत संगीत का भी आनंद लेंगे। रात्रि 8:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनूप जलोटा और दिन 12:30 पर स्मृति शुक्ला। प्रातः 7:00 रोज की तरह आप आनंद लेंगे गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का और 8:45 पर मधुरिमा में मधुर गीतों का आनंद लेंगे। प्रातः 10:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। दिन 11:00 आप सुनेंगे फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो कि आपके ही भेजे हुए व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होगा।

दिन 1:15 पर गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी चर्चा, साथ ही फोन इन में विषय होगा बदलता परिवेश और पारिवारिक रिश्ते, और साथ ही साथ जायका का आनंद लेंगी और गीत संगीत भी सुनेंगी। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

0: मीडियम वेव 241.54 अर्थात 1242 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटली इति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृततैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य, प्राकृतिक अनिलेंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीन सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्री सत्यसाई मण्डलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं गृहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य, उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य, परीक्षणस्य, प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं गृहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिः सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11100 जनाः मृताः, 200+ जनाः व्रणिताः।

0: सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्ध वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

नमस्कार बनारस, कैसे हैं आप सब? सुबह के साथ बज चुके हैं, उठिए जरा, आंखें मलिए और बाहर झांकिए। गंगा मैया की गोद से निकलकर सूरज देवता कब से मुस्कुरा रहे हैं और बनारस की अड़ियों पर चाय का पहला उबाल भी आ चुका है। आपके कानों में बनारसी रस घोलने आ गया है आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त शिखा। बनारस, आज तारीख है 15 मई। कैलेंडर में तो इसे विश्व परिवार दिवस लिखा है, लेकिन हमारे बनारस में, हमारे बनारस में तो कोई ये एक दिन का नहीं, रोज का त्योहार है। क्योंकि यहाँ तो हर बनारसी पैदा ही पारिवारिक होता है। यहाँ सिर्फ घर की चार दीवारी परिवार नहीं होती, यहाँ पूरा मोहल्ला ही एक परिवार होता है। तो अपनी सुबह की चाय के साथ ही सबको बोल दीजिए हैप्पी फैमिली डे। श्रोताओं, ये जो वर्ल्ड फैमिली डे है ना, इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। लेकिन अगर वो बनारस को देखें तो उन्हें परिवार की असली परिभाषा समझ आएगी। बनारस का मिजाज क्या है? घाट पर सुबह सुबह एक ही लोटे से चाय बांटकर पीने वाले यार दोस्त भी परिवार होते हैं। यहाँ अगर आप रात को 12 बजे भी अपनी बाइक का हॉर्न बजा देना तो पड़ोसी एक बार ज़रूर देखेंगे और पूछेंगे भी, का हो गुरु, सब ठीक ठाक तो है ना? यही तो होता है परिवार। यहाँ सुख दुख में पूरा मोहल्ला एक साथ आ जाता है। हमारे यहाँ आई मी माई सेल्फ जैसे शब्द नहीं चलते, यहाँ सिर्फ हम और हमारे लोग चलते हैं। अक्सर हम भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि वो कौन है जो हमारे बिना कुछ कहे भी हमारा चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं। वही तो है हमारा परिवार। संयुक्त राष्ट्र ने जब 1993 में इस दिन की शुरुआत की थी तो इसका उद्देश्य बहुत सीधा था, पूरी दुनिया को ये याद दिलाना कि समाज की सबसे मजबूत और सबसे पहली इकाई एक परिवार होता है। हर साल इसकी एक खास थीम होती है जो हमें पर्यावरण, शिक्षा या तकनीक के बीच परिवार के संतुलन को सिखाती है। सच ही कहा है, मकान

से घर सिर्फ एक परिवार बनाता है। आज के दिन खुद से एक वादा करिए, दिन भर में कम से कम एक समय बिना मोबाइल के पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करेगा। बनारस के अल्हड़पन और जिंदा दिली की जान यही है कि यहाँ अकेले कोई नहीं जीता, यहाँ सब मिलकर जीते हैं। अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे उनके ज़माने के किस्से सुनिए, क्योंकि वो अनुभव की वो किताब है जो गूगल पर भी नहीं मिलती। तो आज बनारसी कचौड़ी, जलेबी, लस्सी, रबड़ी की खुशबू के साथ साथ हवाओं में अपनों के प्यार की महक भी घुली हुई है। इसी महक को समेटे एक प्यारा सा सॉन्ग भी सुन लेते हैं। मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। गुड मॉर्निंग बनारस।

बनारस, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस शिखा के साथ। दोस्तों, आज है विश्व परिवार दिवस। बचपन में जब सुबह सुबह अलार्म बजता था तो सबसे पहली आवाज किसकी आती थी? माँ की, उठ जा, 7 बज गए, जबकि घड़ी में बज रहे होते थे 6। फिर पापा का न्यूज़पेपर ढूंढना, भाई बहन का वॉशरूम के बाहर लाइन लगाना, ये सुबह की खटपट ही तो हमारे दिन की असली एनर्जी है ना? वैसे क्या आपको पता है कि हमारे परिवार के लोग दुनिया के सबसे बड़े बिना डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं? आप कितने भी उदास हो, मम्मी आपका चेहरा देखकर बता देती हैं कि दाल में कुछ काला है। आज मैं आपको परिवार के बारे में एक ऐसी ही दिलचस्प बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम अपने परिवार के लोगों को गले लगाते हैं या उनके साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या? विज्ञान भी मानता है कि परिवार कोई कानूनी या सामाजिक मजबूरी नहीं है। हमारा शरीर और हमारा दिमाग इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमें खुश रहने के लिए अपने परिवार की ज़रूरत होती है। परिवार हमारे लिए एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग और खुशहाल लोग कहाँ रहते हैं? जापान के ओकिनावा में। वहाँ लंबी जिंदगी का राज पता है क्या है? मोआई, यानी एक ऐसा ग्रुप जो सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ परिवार बनकर खड़ा रहता है। तो जनाब, आज के इस भागदौड़ वाले दिन में उस मोआई को, यानी अपने परिवार को थैंक यू कहिए। अपने माता पिता का हाथ पकड़कर कहिए कि आप हैं तो हम हैं। अपनी माँ के हाथ की चाय की तारीफ थोड़ा और कर दीजिए। घर में बनी चाय और भोजन की तारीफ ज़रूर करिएगा आज। और आज ही क्यों, हमेशा अपने परिवार को धन्यवाद देने के ये छोटे छोटे से माध्यम हैं जो हम हमेशा कर सकते हैं और रिश्तों की मिठास को बढ़ा सकते हैं। बनारस की गलियां चाहे कितनी भी संकरी हो, यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। दुनिया में आप चाहे कितने भी बड़े सूरमा बन जाएं, कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन शाम को जब थक हार कर घर लौटेंगे तो वो सुकून सिर्फ आपके परिवार की छांव में ही मिलेगा। जब पूरा परिवार एक साथ हर हर महादेव बोलकर पीछे खड़ा होता है ना, तो बड़े से बड़ा संकट भी रास्ता बदल लेता है। बनारस की गंगा आरती की तरह ही पवित्र होता है परिवार का साथ। पैसा, नौकरी और ये भाग दौड़ तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन बाबूजी की छांव और माँ के आंचल का सुख दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो आज इस गुड मॉर्निंग बनारस की सुबह चाय का कप उठाइए, फोन को डालिए पॉकेट में और अपने परिवार के साथ बैठकर 2 मिनट जी भर कर बतिया लीजिए। उन्हें गले लगाइए और बोलिए, आप लोग हैं तभी तो हम हैं। इसी खूबसूरत और कड़क बनारसी सोच के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं शहर बनारस का हालचाल। नगर निगम में बुधवार को महापौर की पार्षदों के साथ हुई बैठक में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया और तय हुआ कि हर शनिवार को सभी पार्षद अपने घर से निगम कार्यालय आने के लिए पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करेंगे। आईआईटी बीएचयू के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। अमेरिका के प्रतिष्ठित रिसर्च प्लेटफॉर्म research.com की तरफ से जारी वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग 2026 में संस्थान के 9 वैज्ञानिकों को जगह मिली है। इस उपलब्धि के बाद आईआईटी बीएचयू की इंटरनेशनल रिसर्च पहचान और मजबूत हुई है। रैंकिंग में शामिल वैज्ञानिकों में प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर प्रलय मैती, प्रोफेसर राजीव प्रकाश, प्रोफेसर अनुज कुमार, प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा और प्रोफेसर राम शरण सिंह, सत्यवजित और सोमक भट्टाचार्य शामिल हैं। ये सभी अलग अलग विभागों से जुड़े हैं और लंबे समय से रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 441 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट तैयार किया गया है। बजट सामने आने के बाद अब कैंपस में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इतने बड़े बजट का असर छात्रों और यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं पर किस तरह दिखाई देगा। गंगा नदी में परिवहन आधारित पर्यटन की सेवाओं को गति देने के लिए वाराणसी और प्रयागराज के बीच गंगा नदी में इन दिनों जल परिवहन को सुगम बनाने के लिए थाल वेग सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ये पूरा होने के बाद प्राप्त डेटा के अनुसार पूरी रूपरेखा प्रारंभ हो गई है। इसके बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर ही गंगा में काशी से प्रयागराज के बीच क्रूज और मालवाहक जलयानों का संचालन गति पकड़ेगा। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं इतिहास में 15 मई की खासियत। पंद्रह मई भारत और दुनिया के इतिहास में कई मायनों में अहम है। इसी दिन एलिसन गारग्रिप्स नाम की महिला बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इतिहास रचा था। इसी दिन भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव थापर जी का जन्म हुआ था। स्वादिष्ट फास्ट फूड को आप तक पहुंचाने वाली फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत 15 मई को ही हुई थी। रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स नाम के दो भाइयों ने 15 मई 1940 को कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में छोटा सा रेस्तरां खोला था। आज वही छोटा सा रेस्तरां दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बन चुका है। 100 से ज्यादा देशों में इसके 35,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी गर्ल का भी जन्म भी आज 15 मई को ही हुआ था। समाज सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था सन 1817 में आज के ही दिन। 1907 में भगत सिंह और राजगुरु के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटकने वाले सुखदेव जी का जन्म हुआ था आज के दिन। 1923 में जानी वॉकर भारतीय हास्य अभिनेता हैं, जो उनका जन्म हुआ था। 1935 में मॉस्को मेट्रो लोगों के लिए खोला गया था। में ब्रिटेन के सप्लाई मंत्रालय ने घोषणा की थी कि प्रशांत महासागर में किए गए श्रृंखलाबद्ध परीक्षणों के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था। में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 3 रॉकेट लॉन्च किया था। 1999 में कुवैत सरकार ने महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक दिया था आज के ही दिन। 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया था। 2005 में 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा था आज के ही दिन। 2008 में भारतीय मूल की मंजुला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी आज के दिन, यानी कि 15 मई के दिन। तो श्रोताओं, ये थी 15 मई की खासियत हमारे इतिहास के पन्नों में। अब शो को वाइंड अप करने का समय भी हो चला है। आपसे मैं फिर मिलूंगी FM 100.6 विविध भारती के वाराणसी केंद्र पर कार्यक्रम काशी कनेक्ट में सुबह 10 बजे और सुबह 10:30 पर कार्यक्रम बनारस बीट्स में। बनारस बीट्स में हमारा आज का सवाल है कि आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे अतरंगी नाम क्या है, और क्या फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप सच में रिश्तों को जोड़ते हैं या सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस का जरिया है। अपना जो मैसेज है वो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 7905519981 पर। अब इसी के साथ शिखा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: माँ का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की, कहा संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
4: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के

0: समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
1: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15,00,000 से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि NDRF ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
4: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए NDRF के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित किया।
0: कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर

0: श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
1: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध समितियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए बांसुरी वादन। कलाकार हैं पंडित रोनू मजुमदार, राग है अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित किशन महाराज।

अभी आपने पंडित रोनू मजुमदार का बांसुरी पर बजाया राग अहिर भैरव सुना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।
2: विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।

हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

0: जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न

0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सारना में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है।

0: दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, दो दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Aseem Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw in wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said the visit of the Prime Minister is highly opportune.
4: UAE has emerged as a very close third largest trade partner for India. Our bilateral trade has grown.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सैंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों मुमालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तजदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तिजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकतदारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा

0: काम हासिल होगा क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कान पैदा करता है जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से LNG तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत UAE शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तिसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग के दौरान हुई जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी इस्तेकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपए से बढ़कर 90.67 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपए फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपए जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपए हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाजत देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाजत नामा जारी किया जाएगा जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
2: DGFT ने पहली दफा दरख्वास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नजरसानी शुदा मुसविदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत और तिजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफसाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटीमाइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद

0: हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के सादिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था। ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा पांचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मजकूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराये ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोजा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने अंडमानों निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का यह पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारिजा इजलास को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं, एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी जामे नजरसानी कराने का फैसला किया। अखबारात ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे

माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें नृत्य, खासकर कथक का बहुत शौक था और वो एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना हैं। दिलचस्प बात यह है कि माधुरी कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का सपना देख रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1984 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन इंडस्ट्री ने एक चमकते सितारे की आहट पहचान ली।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

संघर्ष के कुछ सालों बाद साल 1988 में आई फिल्म तेजाब ने रातों रात उन्हें सुपरस्टार बनाया और एक दो तीन गाने ने जो धूम मचाई वो आज भी कायम है और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।

उनके करियर की प्रमुख फिल्में हैं राम लखन और परिंदा। इन फिल्मों ने उन्हें अभिनय की गहराइयों को छूने का मौका दिया। दिल जो कि 1990 में आई, इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बेटा फिल्म 1992 में आई और गाना जो था धक धक करने लगा, इस गाने से वो पूरे देश की धड़कन गर्ल बन गई। खलनायक 1993 में जो आया, उसका जो गीत चोली के पीछे क्या है, और उनके अभिनय ने फिर से एक इतिहास रचा। 1994 में आई उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन, ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। निशा के किरदार में उन्होंने भारतीय नारी की एक नई छवि पेश की। माधुरी केवल एक अच्छी अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक अद्भुत डांसर भी हैं। पंडित बिरजू महाराज से लेकर सरोज खान तक हर दिग्गज ने उनकी तारीफ की। देवदास 2002 का मार डाला और काहे छेड़े मोहे उनके बेहतरीन शास्त्रीय नृत्य के उदाहरण हैं।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक।

0: सफलता के शिखर पर रहते हुए उन्होंने साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और अमेरिका चली गईं।
1: भरी मटकी दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच, आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

अमेरिका जाने के बाद साल 2007 में उन्होंने आजा नचले से शानदार वापसी की और आज भी वो कलंक, मजामा और द फेम गेम जैसी सीरीज के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। उनके अभिनय के लिए उन्हें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया और साल 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया।

माधुरी दीक्षित सिर्फ एक नाम ही नहीं है दोस्तों, बल्कि एक दौर है सादगी, सुंदरता और बेमिसाल प्रतिभा का। उम्मीद है मधुरी माँ कार्यक्रम में आज हमने उनके लिए जितनी भी बातें की वो आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही सुनते रहिए मधुरी माँ कार्यक्रम और मुस्कुराते रहिए।

इसी गीत के साथ मधुरिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सभा का।
1: मिर्जापुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणक को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार।
2: स्वगणना कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से sc.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनके उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो आईडी से जनरेट होगी वो SC ID को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको आईडी बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
1: मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 बिस्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं सिर्फ 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाड़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदीय सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए दो दो कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडली प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें

0: अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRF पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी IGRF नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRF के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
1: मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन CCTV कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर SSB 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना ID प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN द्वारा ककरही टड़िया गाय घाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोहरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम

0: महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 400

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार नंदिनी जायसवाल, जिनकी उम्र है 28 वर्ष, पुत्री राजू जायसवाल, निवासिनी कोतवालपुरा बांस फाटक वाराणसी, 20 नवंबर 2024 को डोमरी पड़ाव से लापता हुई। इनका रंग गेहुआ है, लंबाई 5 फीट। घटना के समय इन्होंने काले रंग का जीन्स और हरा शर्ट और सफ़ेद जूता पहन रखा था। इनके विषय में किसी को भी कोई जानकारी प्राप्त हो तो आप नज़दीकी थाना या थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पुष्पा पटेल पत्नी अखिलेश पटेल निवासिनी ग्राम और पोस्ट महगांव थाना राजा तालाब जिला वाराणसी ये 15 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है 25 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा बदन, लंबाई 5 फीट 2 इंच। घटना के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप नज़दीकी थाना या थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

थाना लंका जनपद वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सदानंद पटेल पुत्र मनकू पटेल निवासी ग्राम और पोस्ट रमना थाना लंका जनपद वाराणसी। ये 14 अप्रैल 2024 को से लापता हुए हैं और इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी उम्र है लगभग 23 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 4 8 इंच, ये सामान्य हिंदी भाषा में बात करते हैं, सामान्य कद काठी है, गेहुआ रंग, गोल चेहरा। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नज़दीकी थाना या थाना लंका जनपद वाराणसी को सूचित कर सकते हैं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: रब्बो को ज्यादा ही मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब उसको चलना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। रब्बो अपने अमली इरादे के साथ आगे बढ़ रही थी, रास्ते खुलते गए, वो आगे बढ़ती गई, क्योंकि अब उसने किसी की परवाह नहीं की थी, बस वो थी और उसका मकसद। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास और बेहतर करना चाहती थी, जिससे आने वाली नस्लें उसके तजुर्बात से फैज़ हासिल कर सकें। धीरे धीरे अदबी दुनिया में उसकी खास पहचान बन गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वाकई यही रब्बो के साथ भी हुआ। ये एक सच्ची हकीकत है कि जब तक आप दूसरों से मदद चाहेंगे या दूसरों की परवाह करेंगे, तब तक समाज के लोग आपको जीने नहीं देंगे। लेकिन जब अल्लाह और उसके इंसाफ का दामन थामेंगे, रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे। आज रब्बो आपा बुलंद और अजीम शख्सियत के मालिक हैं, मगर माजी की तलखियों ने कभी भी रब्बो को तन्हा नहीं छोड़ा। हालांकि रब्बो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी। वो तल्ख हकीकतें जिन्होंने इनको मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। रब्बो इन हालात से बहुत दूर जाना चाहती थी, मगर माजी ने इन्हें अपने हिसार में जकड़ रखा था। आज रब्बो तन्हा ज़रूर थी, मगर इनका कलम तेज़ी से रवा था। इन्होंने कई किताबें भी लिखीं और शाया होकर मंजर आम पर भी आ गईं। रब्बो ने दीगर दूसरे कामों में भी अपनी सलाहियत का सबूत देकर अपनी खास पहचान बनाई, मगर लफ्ज़ गरीब की लड़की उनको परेशान किए थे। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। मगर उसे अपनी जैसी समाज की लड़कियों के लिए सामने आना था। जो गरीब की लड़कियों को किसी लायक नहीं समझते, उसे आगे चलना था, आने वाली नस्लों के लिए एक नज़ीर बनना था। आज वालदेन की कमी उसे हर मौके पर अकेलेपन का एहसास दिला रही थी। जब रब्बो को कोई किताब शाया होती या अदबी अवार्ड उसको दिया जाता, तो उस वक्त वो बहुत परेशान और रंजीदा हो जाती, इस ख्याल से कि मैं अपने वालदान को कैसे बताऊं कि अब आपकी बेटी गरीब नहीं रही। आज रब्बो की कामयाबी पर वही ख़ानदान वाले उस पर फ़ख्र करते हैं, मगर वो माजी की तलखियों को कभी नहीं भूल पाई। मगर फिर भी तुझको चलना होगा, और वो चलती रही, आगे बढ़ती रही, बेखौफ खतर संगलाख वादियों में गिरते हुए, पत्थरों की चट्टानों से चोट खाते हुए, अपनी तन्हाई के साथ रब्बो को आगे बढ़ना होगा। यही ज़िंदगी का सच है, और यही तलखी आज भी उसकी कामयाबी में पेश पेश है।
1: सामाइन, अभी आप तुझको चलना होगा उन्वान से समात फरमा रहे थे खूबसूरत अफसाना। अफसाना निगार थी मोहतरमा सिफतुज़्ज़हरा ज़ैदी। सामाइन, अब माहौल को तब्दील करते हैं, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायरा मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी।
2: गज़ल का मतला पेश खिदमत है। अपना अपनों से आज

उसकी फितना गरी न जाएगी, उसकी फितना गरी न

से आज हारा है। गजल का मतलब पेश खिदमत है। सर पे साया ना साहिबा।

0: न साहिबां अपना।
1: सामईन, अभी आप कलाम शायर के तहत महजूज हो रहे थे शायरा मोहतरमा तरन्नुम नाज़ फ़तेहपुरी के खूबसूरत कलाम से। आपको ये

प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दें इजाज़त। आदाब।

0: अभी सामयिन समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश था। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत के अंतर्गत लोक रंग में संजू सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। आइए श्रोताओं, इन्हीं के स्वर में सुनते
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शैल बाला सरकार। आइए पहले इनके स्वर में सुने ये पचरा, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं ये छोटा सा संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।

ये कहरवा आपने शैलबाला सरकार की आवाज़ में सुना। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।

झंकार कार्यक्रम में पहला गीत सुनिए हम साया फिल्म से, आवाज है आशा भोसले की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत निर्देशन ओपी नैयर का है।

ये गीत आपने हमसाया फिल्म से सुना, आशा भोसले की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आखिरी खत। आखिरी खत फिल्म से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने और इसकी धुन तैयार की है खयाम ने।

आखिरी खत फिल्म से ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। आइए अगला गीत भी लता मंगेशकर की ही आवाज में सुनते हैं। फिल्म का नाम है आंचल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अगला गीत झंकार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं, अवतार फिल्म से आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये गीत आपने अवतार फिल्म से सुना, जिसे आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आइए अगला गीत सुनते हैं, ईमानदार फिल्म से, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडेकर और आशा भोसले ने। शब्द रचना है प्रकाश मेहरा की, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

जी हाँ श्रोताओ, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @airvaranasi। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

0: बजने दे जरा। जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर। जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी, और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

झंकार कार्यक्रम में अब सुनिए इजाजत फिल्म से ये गीत जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत निर्देशन राहुल देव वर्मन।

इजाज़त फिल्म से ये गीत आपने आशा भोसले की आवाज़ में सुना। अगला गीत हम आपको बैराग फिल्म से सुनवा रहे हैं। आवाज़ है आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

बैराग फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं हीरो फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और मनहर उधास ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हीरो फिल्म से ये गीत सुनने के बाद आइए सुनते हैं अगला गीत हिना फिल्म से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

हिना फिल्म से ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना, और कार्यक्रम में आखिरी गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं कामचोर फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे फिल्मों के नाम और इन्हीं फिल्मों के गीत सुनने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। कार्यक्रम के नियम तो आप जानते ही हैं, फिर भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। आज के इस कार्यक्रम में अगर आप गीत सुनना चाहते हैं तो हमारी बताई हुई फिल्मों के लिए आप हमें संदेश भेजेंगे, और एक श्रोता केवल एक गीत के लिए इस कार्यक्रम में हमें एक बार ही अपना संदेश भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जिस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं उसी में आपका संदेश, आपका नाम पढ़ा जाए। और अगर बहुत सारे संदेश एक साथ आते हैं फिर भी हम आज के इस कार्यक्रम में आपका नाम अवश्य शामिल करेंगे। पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता देते हैं अब उन फिल्मों के नाम जिनके गीत सुनने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। हमारी आज की फिल्में हैं हम, दबंग, सातवां आसमान, हम साथ साथ हैं और खूबसूरत। इन्हीं फिल्मों के गीत सुनने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। फिल्में हैं हम, दबंग, सातवां आसमान, हम साथ साथ हैं और खूबसूरत। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे हम फिल्म का गीत। और इस कार्यक्रम को लेकर आज हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर अंजना झा। कार्यक्रम में हम गीत आपको सुनवाएं उसके पहले कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं। ये संदेश आया जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। संदेश आया नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। ये संदेश है अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह का ये संदेश आया है मुंदीचक भागलपुर से। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनस अब्बासी और यशफ अब्बासी। पाकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। हरीश चंद्र उपाध्याय के करहिया लोहता वाराणसी से आपका संदेश कार्यक्रम में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से आपका ये

संदेश है और अगला संदेश शामिल कर रहे हैं गांधी चौक बारमेड़ राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा।

0: दतरंगी भाटा पारा से हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा का संदेश है। ग्राम चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और कमल साहनी, ये संदेश आया है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य। राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक केशरी, एक संदेश और शामिल करते हैं। उसके बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का पहला गाना। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना और निवान शर्मा का। तो चलिए आज के कार्यक्रम का ये गीत सुन लेते हैं, बाकी के संदेश उसके बाद।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

बहुत सारे व्हाट्सएप संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और दोनों ही फिल्मों के लिए ये फरमाइशें गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर और सुमन जायसवाल का व्हाट्सएप संदेश। अगला संदेश आया विनय प्रजापति, गोविंद प्रजापति, वंदना प्रजापति, राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति का जलालीपुरा वाराणसी से। ये संदेश है ऐनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी और सलीम आज़ाद अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, आपका संदेश आया धरारा से। बदरुद्दीन अंसारी, अनवर अली अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आज़ाद, मल्लू अंसारी, अहमदनगर बजरडीहा वाराणसी से। और संदेश है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल। ये संदेश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान, फरहान, समायरा, आजमीन गुड़िया का व्हाट्सएप संदेश। और अगला फरमाइशी संदेश है ग्राम नागर कोहरा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू का। आलिया खान, नाजिया खान, शादिया खान शाहजहांपुर से। बुंदेलखंड हमीरपुर से राजू यादव, ये संदेश है ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। जिला वारंगल से मोहम्मद रिजवानुद्दीन, मोहम्मद खाजा फसियोद्दीन, आयशा तवस्सुम और जुबेरिया का व्हाट्सएप संदेश। चंडीगढ़ से सतीश शर्मा, नेत्रपाल सिंह, वाराणसी से परवेज अहमद का संदेश आया। और ये संदेश है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। पोफाली यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, अंशिका, आदित्य और अंजलि का व्हाट्सएप संदेश आया। और ये संदेश आया है ग्राम लसूरिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी और कृतिका। नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस और मुनीरुन्निसा का व्हाट्सएप संदेश। अगला संदेश आया है मोसी मंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, सद्दाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी, वजर बिहार धरारा वाराणसी से। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का संदेश आया हनुमानगढ़ राजस्थान से। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता नासिर शेख, नाजिया, साजिद, शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना, हसीना दिलशाद। मुबारकपुर आयशा तालाब से शाहीन फातिमा और अनीस फातिमा का संदेश।

वडिंग खेरा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। मेहसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कोआथ बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। और संदेश है सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन और नाजिया नूरी नाज। कुंभार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग जी का ये संदेश है। और अगला संदेश आया बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीष शर्मा, राहुल शर्मा, फगवाड़ा पंजाब से। संदेश शामिल कर रहे हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का। ये संदेश है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। ककरहिया लोहता वाराणसी से हरीशचंद्र उपाध्याय, यश उपाध्याय, विशाखा और पीहू का संदेश। पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार का ये संदेश है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी। ग्राम भीलखेड़ी तहसील सारंगपुर राजगढ़ मध्य प्रदेश से धनराज बैरागी और सीमा बैरागी का व्हाट्सएप संदेश। अगला संदेश टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत राय का संदेश। अगला संदेश अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से। ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश। देवल देवलास मऊ से रमेश चंद्र और मास्टर भारती। रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता, यशराज, ऋषि सिंधे और कृष्णा घोड़के का ये संदेश है। करनाल बलिया से श्रोता है अमितेश कुमार तिवारी, आपका संदेश कार्यक्रम में शामिल हुआ। चोचकपुर गाजीपुर से राम सकल चौधरी। सबिया खान, अनस खान, शकील खान, दनियाल खान, आपका संदेश आया मुंबई महाराष्ट्र से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया जिया, तुसी, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी साव, जयप्रकाश साव, वसंत लाल और पन्ना लाल साव और साथ में परिवार के अन्य सदस्य। आपका संदेश पिहरा बाजार झुमरी तलैया से। और कोलकाता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, आपका संदेश शामिल हुआ। और अब चलिए आपको सुनवाएं ये गीत।

आप सुन रहे थे दबंग फिल्म का गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे सातवां आसमान फिल्म से। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, और आज का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। ये संदेश आया है वालिदपुर मरहामऊ से। राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप और भगल यादव का। अगला संदेश मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी का संदेश। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल और सिया जाधव, साथ में परिवार के सभी सदस्य। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। जमालपुर खगड़िया बिहार से सिकंदर कुमार ताती, अविनाश कुमार और रितेश का ये संदेश है, और इसमें एक नाम और मेंशन है, संजय शाह का। पुरानी भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी सदस्य। मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का व्हाट्सएप संदेश है ये। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता। श्रोताओं, आपसे अनुरोध हम कर रहे हैं, कृपया दोबारा संदेश आज के इस कार्यक्रम में न भेजें, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं के संदेश को कार्यक्रम में शामिल करना होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है हम किसी का भी संदेश कार्यक्रम में छूट न जाए, इसलिए आपसे हम बार बार अनुरोध करते हैं। ये संदेश आया मुनीब सिंह जमानिया दरौली से। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी और नंदिनी कुमारी का संदेश है। अनारकली बाजार जगराहा से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव। ये संदेश आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वीणा मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना। ग्राम फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश। अगला संदेश छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातमा। बाम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र, राकेश, प्रकाश और इनके सभी मित्रगणों का ये संदेश है। अगला संदेश जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। सुकलपुरा वाराणसी से परवेज अहमद। श्रोताओं, आपसे एक अनुरोध और है, कृपया केवल अपना ही नाम, अपना संदेश हमें भेजें, किसी दूसरे श्रोता का संदेश आप इस कार्यक्रम में हम तक न पहुंचाएं। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया रानी, आपका संदेश नवली गाजीपुर से। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। फरवाइसी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम में यह संदेश है चौसा गोला बक्सर से जय

राम बिंद, सीता मुन्नी देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, श्वेता रानी पाठक, कंचन मिश्रा, सीता मुनि और जयराम बिंद का संदेश। अगला संदेश आया छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी। जौनपुर से रीशु मौर्य का व्हाट्सएप संदेश। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, सीटी दीवाना पंखा रोड, जनकपुरी से पिंटू राजेंद्र सिंह ओबेरॉय। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन का ये संदेश है। अगला संदेश शामिल कर रहे हैं बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत और चेतन नाहटा का। मिर्जापुर से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान, राहुल कोमल, शुभम प्रियंका, आंचल कुंज पर्व, प्रवीण धीमान, चिराग, रजत राजेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो, गुड़िया बानो आपका संदेश नगर पंचायत गंगापुर गोला बाजार से। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का संदेश। अगला संदेश श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का। और इस संदेश के बाद हम गीत की तरफ चलेंगे। दत्रेंगी से हमारे श्रोता भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो चलिए अब आपको हम सुनवाई देते हैं इस कार्यक्रम में सातवां आसमान फिल्म का गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज के इस कार्यक्रम में जो अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे उस फिल्म का नाम है खूबसूरत। इस खूबसूरत गीत को सुनने से पहले आपके संदेश हम पढ़ लेते हैं जो फरमाइशी संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का संदेश। और ये संदेश आया है साहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीणा आशीष राजा, चैतन्य मस्किन मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु विशाल लाड़ी खेड़ा, तिवानशी शालिनी वाणी और जीवन सिंह का ये संदेश आया है। अगला संदेश है विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पलीपुरी और सुनील पाठक, आपका संदेश आया फतेहगढ़ लुधियाना से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नुहानकर, निर्मला और विशाल का संदेश। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ, शिवांगी और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम गहमर हनुमान मंदिर चांदनी चौक से आपका संदेश है। और ये संदेश आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानसी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और यहीं से मास्टर अल कबीर। गुरजीत सिंह नगर पंचायत बिलसंदा पीलीभीत उत्तर प्रदेश से आपका संदेश कार्यक्रम में शामिल हुआ। और अब अगले संदेश की तरफ हम चल रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना और हर्षित और यहीं से खुशी गोस्वामी, छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबलू और प्रियांशु, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा का संदेश, मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। ये संदेश आया है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति और डीकेश साहू का। हमारे कुछ श्रोता फोन का नंबर बदल कर और रिपीट संदेश हमें भेजते हैं, आपसे अनुरोध, आपका संदेश अगर शामिल हो चुका है कार्यक्रम में और आपने अगर भेज भी दिया है तो आप कृपया दोबारा संदेश न भेजें।

मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी का संदेश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये संदेश आया बुलडाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का। अगला संदेश खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोटाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। बटिंडा रोड मर्डी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का संदेश। संदेश आया बुलढाणा महाराष्ट्र से समर्थ दादा भागवत, लक्ष्मी देवी, कुमारी सनिका, बर्फगांव नादुरा से शिवाजी और राहुल उगले का संदेश। अगला संदेश दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा और पूनम जायसवाल और रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और निर्मला त्रिपाठी का ये संदेश है। अगला संदेश है नवीन श्रीवास्तव का गंगापुर गोला बाजार से। ये संदेश आया चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे का। संदेश शामिल कर रहे दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। मेरठ से आपने संदेश भेजा है। नारवा जोधपुर राजस्थान से नरपत सोनी, वैशाली सोनी, गणेश चौक रतनाड़ा जोधपुर राजस्थान से नरेंद्र भाटी और वीणा भाटी। अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। बहुत सारे संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, हम आपको सुनवाएंगे खूबसूरत फिल्म का गीत और उसके बाद हम साथ साथ है फिल्म का गीत। कुछ संदेश और शामिल कर लेते हैं गीत को सुनने से पहले। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश और हर्ष कुमार सेन। ये संदेश आया एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना का। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हमारे श्रोता जावेद अख्तर राही, शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन। खदान कोठी बोरोपारा चौक बसवेरिया वेस्ट बंगाल से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश, वसंतलाल, अर्जुनपुर दमदम से हीरा मोती और पन्नालाल साव और अनुरोध। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारा स्वीकार भी करते हैं और बहुत सारे श्रोता कार्यक्रम में बार बार संदेश भेजते हैं। हम संदेश शामिल कर रहे हैं और अभी चलते हैं गीत की तरफ।

कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे खूबसूरत फिल्म का गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाएंगे हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत। गीत को सुनने से पहले श्रोताओं के संदेश हम पढ़ते हैं। ये संदेश आया पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का। कैथल हरियाणा से मधु नायक का संदेश। अगला संदेश दिलदार नगर ग्राम पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम

ये संदेश है गंगापुर गोला बाजार से नवीन श्रीवास्तव। अगला संदेश है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो। तकिया मड़ियाहू से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद इसरत शाह, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद रोमिस शाह, मोहम्मद हसरत शाह और मोहम्मद आबान शाह। मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, काफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातमा। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। शिवाला से सुमिता का ये संदेश है। ये संदेश आया साई की सिंडी से सुरेश मालोदे, वर्षा, श्रद्धा और मानसी का। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश है। जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद मुलानी और नसीर मुलानी का संदेश आया पंढरपुर से। शिवपुर वाराणसी से संतोष कुमार। ये संदेश आया पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता का। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव का संदेश है ये। और अगला संदेश है जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद, शमीम अख्तर अंसारी, कटरा मुबारकपुर से। जमालपुर गोगरी खगरिया बिहार से सिकंदर कुमार ताती, अविनाश कुमार और रितेश का ये व्हाट्सएप संदेश आया। और अब कार्यक्रम में चलते हैं गीत की तरफ। फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में संदेश भेजने का वक्त अब खत्म हो चुका है। एक संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे हम पढ़ते हैं। ये हमारे श्रोता हैं अख्तर खान, अमजद खान, अफजल खान, आसिफ खान, आरिफ खान, सैफ खान, कैफ खान, अमीन खान, अयान खान, नगर पंचायत गंगापुर जवाहर नगर से।

मदरसा गेट भावपुर मड़िया हूँ जौनपुर से संदेश आया अरशाद अहमद अंसारी कामरान इरशाद अरमान इरशाद नवेद इरशाद और अजरत तबस्सुम रायपुर अनई बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी नौरीन अंसारी आफिया परवीन। श्रोताओं कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं ने हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जिन्होंने कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर केवल एक बार अपना संदेश भेजा उनका विशेष शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। कार्यक्रम लेकर आज मैं उपस्थित थी आपकी रेडियो हमसफर अंजना झा। आप गीत सुनते रहिए और मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
3: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
3: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
3: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
3: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
3: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
3: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
3: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
3: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
3: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
3: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
3: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
3: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
3: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं, कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित।

0: इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा

0: हूँ।
1: कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
2: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
1: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
2: अब सो जाओ।
1: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: নাম সুবেদার যোগিন্দর সিং।
1: জব তুম লোট কর যাও তো লোগোঁ সে হামারে বারে মে কহনা কি তুমারে কল কে লিয়ে হামনে আপনা আজ কুরবান কর দিয়া, আপনা আজ কুরবান কর দিয়া। জরুর ইয়ে শব্দ কিসি এসে যুদ্ধবীর কে হোঠো সে নিকলে হ্যাঁ জিসনে দেশ কি রক্ষা কে লিয়ে আপনে জীবন কা বলিদান দে দিয়া। আজ হাম ভারত মাতা কে এক এসে হি সপুত কি চর্চা করেঙ্গে জিনহোনে 1962 কে ভারত চীন যুদ্ধ মে আপনে অসাধারণ শৌর্য কা পরিচয় দিয়া আর দেশ কা মস্তক গৌরব সে উঁচা কর দিয়া।
2: ও যুদ্ধ নায়ক হ্যাঁ ভারতীয় সেনা কে সুবেদার যোগিন্দর সিং। উনকা জন্ম 28 সিতম্বর 1921 কো পঞ্জাব কে মোগা জিলে কে এক ছোটে সে গাঁও মহাকলা মে হুয়া থা। বচপন সে হি ও বড়ি কুশাগ্র বুদ্ধি কে থে আর আপনি স্কুল মে এক মেধাবী বিদ্যার্থী মানে জাতে থে। যোগিন্দর সিং সেনা মে ভর্তি হো গয়ে।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज यह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
2: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
5: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।

0: तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
1: जी सुबेदार साहब।
0: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए

अभी आप सुन रहे थे भजन रचना तुलसीदास की थी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं स्मृति शुक्ला और इनकी आवाज़ में आज आप सुन रहे हैं भजन। अब सुनिए रैदास की रचना।

ये था आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी स्मृति शुक्ला। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एकल तबला वादन। कलाकार हैं श्रुतिशील उद्धव। ताल है धमार

अभी आप सुन रहे थे एकल तबला वादन। कलाकार थे श्रुतिशील उद्धव, ताल था धमार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति

0: शक्ति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्षी की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे श्रुतिशील उद्धव का एकल तबला वादन। स्वास्थ्य पत्रिका का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे का। गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित अंजुमन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे अनूप जलोटा, समय रात्रि 8 बजे का। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें बातचीत के साथ ही किसान भाइयों को सुनवाएंगे लोकगीत। कलाकार होंगी शैल बाला सरकार। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। युवा साथी अपना युवा वाणी कार्यक्रम

कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना गृह लक्ष्मी कार्यक्रम, जिसमें बहनों को सुनवाएंगी फोन इन कार्यक्रम। विषय होगा बदलता परिवेश और पारिवारिक रिश्ते। एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय दिन

एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय दिन 2:30 का। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे। फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम रसरंग का प्रसारण समय शाम 7:31 का और रसमाधुरी आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीषा देवी, जिनके पिता का नाम रामवचन है, ये निवासी हैं सेवर खरकला थाना चंदौली की। मनीषा देवी 11 अप्रैल 2026 से लापता हैं। मनीषा देवी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार। इनकी उम्र है 23 वर्ष, चेहरा गोल, रंग गेहुआ और इनकी लंबाई है 4 फुट 6 इंच। अगर आपको मनीषा देवी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष चंदौली को सूचित कर सकते हैं और सूचना के लिए हम आपको नंबर भी बता रहे हैं। नंबर है 8881366855। नंबर एक बार फिर से सुन लें 8881366855। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से ही प्राप्त सूचना के अनुसार इंदु यादव, जिनके पिता का नाम रामलाल यादव है, ये निवासी हैं गोरखा थानाधीना जनपद चंदौली के। इंदु यादव 6 मई 2026 से लापता हैं। इंदु यादव की उम्र है 20 वर्ष, इनका चेहरा गोल है, रंग सांवला और लंबाई है 5 फीट 3 इंच। अगर आपको इंदु यादव के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष धीना जनपद चंदौली को सूचित करें और सूचना के लिए हम आपको नंबर भी बता रहे हैं। नंबर है 7390091420। नंबर एक बार फिर से सुन लें 7390091420। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ रुपए के 79 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को रिहाइश, बेरोजगारों को नौकरी फराहम कर रही है।
1: आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत की सुविधा है, नौजवान के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती हुई मैं देख रहा था कि महाराजगंज के भी है कि नहीं है, मैंने देखा कि सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से भी भर्ती हुई।
0: वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ अवामी फलाही इसकी मुख्य मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और टूल किट्स भी तकसीम करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासत में शदीद तूफान ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान के रद्देअमल में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासरा इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता

0: पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जन हानि प्रयागराज में हुई है।
1: समाचार कक्ष से मैं अरुण।
2: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इम्तिहानात बगैर किसी फीस के होंगे। हम इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तलबा पर माली बोझ न पड़े। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि आइंदा इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफियों से कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान कम्प्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड के जरिए लिया जाएगा। वहीं एनटीए ने हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है। दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को होगा। इससे कबल 3 मई को हुए इम्तिहान को पेपर लीक होने पर मंसूख कर दिया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहरियों से ईंधन को बचाने की अपील के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन को बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मुतबादिल तवानाई के जरिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कारपोलिंग को अपनाने पर जोर दिया है। लखनऊ में एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से खिताब करते वजीर आला ने कहा कि बुहरान के वक्त कौमी मफाद को मुकदम होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौम के साथ खड़ा हो और अपना हिस्सा डाले। एलपीजी पर इन्हिसार कम करने के लिए बायोगैस प्लांट्स पर मबनी कम्युनिटी किचन मॉडल तैयार करने पर खुसूसी जोर दिया गया। दरअसल मुल्क के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपीलों के जवाब में अपनी मुतालिका वजारतों और महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की अपील के मुताबिक वजारत की सतह पर एक साल तक सोना खरीदने से बाज रहने का फैसला लिया गया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी काउंसिल की पार्लिमानी कमेटियों के तमाम पहले से तयशुदा दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया है। रियासत में देसी दूध की पैदावार को फरोग देने के लिए कल आगरा में एक डेयरी कॉन्क्लेव 2026 के इनका किया गया जिसका मौजू था स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद सम्मेलन। रियासत के मवेशी परवरी और डेयरी तरक्कत के वजीर धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बेसहारा मवेशी हुकूमत की तरजीह हैं। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। महकमे मौसमियात ने आज से 18 मई तक रियासत में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने दिन के वक्त कुछ इलाकों में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले हफ्ते के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान है जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं टूर्नामेंट आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से शाम 7:30 बजे लखनऊ में होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
3: सखियों के साथ,
4: सखियों के बाद,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृहलक्ष्मी।
5: सभी श्रोता बहनों को मेरा यानी इलाका और हमारी रेडियो सखी सोनी तुम्हें भी प्यार भरा नमस्कार।
6: हमारी सभी सखियों को सोनी का प्यार भरा नमस्कार और इला आपको भी बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार।
5: सोनी, हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं एक परिवार के साथ, है ना। परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा एहसास है जहां अपनी कमियों के साथ आपको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है।
6: और इला जी, हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। तो परिवार दिवस से मैंने भी 2-4 लाइन की कविता लिखी है, क्या मैं सखियों को सुना दूं?
5: बिल्कुल भाई।
6: घर के चार दीवारी नहीं अपनों का साथ है, घर के चार दीवारी नहीं अपनों का साथ है, मुश्किलों में जो थामे वो भरोसे का हाथ है, धूप में जैसे बरगद की छाया और ईश्वर की दी हुई अनमोल माया। तो इला जी,

0: परिवार ही वो छाया है जिसके नीचे हम सब सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, है ना?
1: बिल्कुल। और अपना परिवार ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं थके माने दिन
0: जी
1: भर के काम करके जब लौटते हैं हम अपने घर में अपने परिवार के बीच आते हैं तो लगता है कि बस हमारी सारी चिंता परेशानियां सब खत्म हो गई और अपने आप को हम तरोताजा महसूस कर सकते हैं। और आज 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम सभी मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है परिवार के महत्व को रेखांकित करना और समाज में उनकी भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की जो एक रूपरेखा पहले होती थी वो कहीं ना कहीं लोग बदल रही है।
0: जी
1: लोग भाग दौड़ भरी समय में, इतनी जो समय चल रहा है भाग दौड़ वाला, उसमें लोग कहीं ना कहीं अपनों को छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ अपने तक सीमित होते जा रहे हैं। तो हमारा ये दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने परिवार के महत्व को समझिए और परिवार के साथ मिलजुल करके रहिए।
0: बिल्कुल लाजी। और देखिए, परिवार ही हमारे जीवन की आधारशिला है जो हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती
1: हाँ
0: है। और ये प्यार सुरक्षा संस्कारों की पहली पाठशाला है जो हम परिवार में यही रहकर अपने संस्कारों को संस्कृति को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम कहीं बाहर से कहीं टेंशन में होते या तनाव होता है या काम का प्रेशर होता है तो हम अपने परिवार में आकर उस तनाव को व्यक्त करते हैं और हमें एक संबल मिलता है।
1: बिल्कुल सही बात है। परिवार का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो संबल है कि
0: जी
1: हमारी कैसे भी उतार चढ़ाव जीवन में आता है ना, कोई परेशानी आती है तो परिवार के लोग मिलजुल कर आपसे सहयोग से हमारी परेशानियाँ बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। एक मानसिक रूप से हमें खुशी भी मिलती है और हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। परिवार ही ऐसा है जहाँ पता है सारे हर एक सदस्यों को कि हर एक सदस्य की क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, और उसके होने के बावजूद भी लोग सब एक साथ एक छत के नीचे मिलजुल करके रहते हैं। और अगर परी छत के नीचे न भी रहें, कहीं दूर भी हैं, फिर भी वो प्यार बना रहता है।
0: और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बाहरी जो लोग होते हैं तो वो हमें अपने पद प्रतिष्ठा या हमारी योग्यता के बल पे आंकते हैं और हमें वो समझते हैं, लेकिन हमारा जो परिवार है, जैसा कि आपने कहा कि हमें हमें खूबियां भी हैं और कमियां भी हैं, तो वो हमें दोनों के साथ एक्सेप्ट करते हैं,
1: बिल्कुल
0: स्वीकार करते हैं और आपके हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। और आजकल देखिए कि जैसा कि आज का समय भी बदल रहा है तो आजकल एकल परिवार की स्थिति भी बढ़
1: बढ़
0: रही
1: गई
0: है,
1: है।
0: तो ऐसे में हम बहुत अलग हो जा रहे हैं अपने परिवार से। अपने जैसे हमारे घर परिवार में पहले दादा दादी नाना नानी होते थे, चाचा चाची होते थे, तो वो लोग हमें एक संबल प्रदान करते थे। कभी अगर माँ बाप ना रहे तो वो लोग हमें मतलब संरक्षण देते थे, हमें कहानियाँ सुनाते थे, हमें खिलाते पिलाते थे, तो छोटी छोटी चीज़ें मतलब हल हो जाता था हर समस्या का।
1: बिल्कुल सही बात है कि परिवार के बीच में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो आपस में ही हल हो जाती हैं, जो कि आज के समय में जहाँ एकल परिवार है या लोग जो कि सिर्फ अपने तक ही सीमित हैं, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं और उसके लिए हर जगह उनको कहीं ना कहीं उस अपने उस मदद के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। तो अगर परिवार के साथ में है तो ये सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। और परिवार में रिश्तों का जो ताना बाना होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रूठना, मनाना, मान मनोवल, सम्मान, है ना,
0: जी
1: इन सब के साथ में होता है। और परिवार को हंसी खुशी बनाए रखने के लिए यही उसके जो कहा जाए ना, उसकी कीमत यही होती है कि हमें थोड़ा सा रूठना भी चाहिए, फिर मनाना भी चाहिए,
0: भाई,
1: है।
0: उसमें भी तो
1: और
0: मजा
1: हाँ, सम्मान अगर आप
0: है।
1: चाहते हैं खुद के लिए, तो दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए, है ना। दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करिए, तभी वो आपकी समस्याओं को भी लोग समझेंगे और परिवार के लोग एक दूसरे को सहारा देंगे। तो
0: भाई,
1: भाई
0: खट्टे मीठे रिश्तों का ही नाम
1: बिल्कुल,
0: परिवार
1: तो इस
0: है
1: कार्यक्रम में हम इतनी अच्छी टॉपिक लेके आज बात कर रहे हैं, तो
0: जी।
1: वही गाना तो बनता है।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: आइए बहनों, सुनते हैं ये गीत।
0: जी।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आज एक और दिन भी महत्वपूर्ण दिन है। आज आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जयंती है और उनका जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी

0: के साहित्य के युग प्रवर्तक, निबंधकार, संपादक और आलोचक थे। और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और सरस्वती पत्रिका के संपादन से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत कर हिंदी साहित्य की मुख्य धारा से उसको जोड़ा, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना गया।
1: सही बात है, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्हें एक युग पुरुष, महान निबंधकार, समालोचक और पत्रकार थे। और इन्हीं के जो समय था, जिस समय के ये क्या निबंधकार थे, उस कालखंड को ही इनके नाम पे पूरा द्विवेदी युग नाम से हम सभी लोग जानते हैं। जैसे हम सबने भी जो पढ़ाई की है हिंदी की, हाँ, तो उसमें द्विवेदी युग का बहुत ज्यादा हम लोग महत्व था, महत्व था। तो भाई इनकी बहुत सारी इन्होंने रचनाएं हैं, इन्होंने लिखा है, इन्हें बहुत सारे निबंध हैं। और गद्य और पद्य की इनकी एक भाषा थी जिसको खड़ी बोली होनी चाहिए, वो ज़्यादा तो लोग करते थे। और उस समय जिस समय इन्होंने गद्य और पद्य की रचना की, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे कविता वो ब्रिज भाषा में करते थे। ऐसे समय मेरिया इन्होंने खड़ी बोली को जोड़ दिया और एक मतलब जैसे वो परंपरा एक चल पड़ी, है ना। इनकी बहुत सारी कृतियाँ थी, जैसे उसमें रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, काव्य मंजूषा, अद्भुत आलाप और संपत्ति शास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र के लिए इन्होंने कविता अपनी किताब लिखी है, इनकी प्रमुख रचनाएँ इनकी थी।
0: और इला ये भी एक बात सामने आई है कि वो एक कर्मयोगी थे और उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर हिंदी सेवा को चुना था, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हिंदी नव जागरण का उन्हें अग्रदूत कहा जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि आधुनिक हिंदी गद्य का शिल्पकार भी माना जाता है। उन्होंने कई सारी रचनाएँ, देव स्तुति, शतक, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, कविता कलाप, कालिदास और कालिदास की निरशंकता, ये सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और उन्होंने समाज सुधार और देश प्रेम की भावनाओं को साहित्य के माध्यम से बढ़ावा दिया।
1: सही बात है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो भी तारीखें होती हैं उसका एक इतिहास होता है और हर एक तारीख अपने अंदर बहुत सारी बातें छुपा करके रखता है, है ना। कि 15 मई कभी बहुत पीछे अगर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे 15 मई के दिन क्या क्या होते हैं और आज हम लोग किस रूप में 15 मई को मना रहे हैं, तो बहुत कुछ होता है। और वैसे सोनी, हम आज हमारा जो वो है परिवार, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और इस पे हमने अपने बहुत सारी बहनों से बात भी की है।
0: अच्छा
1: तो जो हमारी बहनें हैं ना, इनके बहुत सारे विचार हमारे तक आए हैं। तो बहनों आइए हम सुनाते हैं आपको हमारी बहनों के विचार।
0: नमस्कार, मैं आकाशवाणी वाराणसी से सोनी बात कर रही हूँ। आप कौन बोल रही है, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार सोनी जी, मैं प्रज्ञा मिश्रा।
0: जैसा कि आप जानती हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का हमारा विषय है कि जो आज का परिवेश बदल रहा है और ऐसे में पारिवारिक रिश्तों की क्या स्थिति है, तो इस विषय पर कुछ आप अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी या हमारी सखियों को संदेश देना चाहेंगी।
2: जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो आज सबसे पहले तो मैं परिवार दिवस के बारे में ये कहना चाहूंगी, आज का जो परिवार है, कह सकते हैं कि आज परिवार की परिभाषा बदलती जा रही है। जहां पहले परिवारों में एकता थी, सामंजस्य था, ज्वाइंट फैमिली थी, एक दूसरे के प्रति सुख दुख का ध्यान रहता था, सभी लोग एकजुट होकर निर्णय एवं समस्याओं, चुनौतियों को एक साथ जो है सामना करते थे और हल करते थे और निर्णय भी एक साथ लेते थे। मगर आज के परिवेश में क्या है, सब कुछ बदलता जा रहा है, ना वो प्रेम है ना भाईचारा है, लोग बिखरते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुश नहीं रहते हैं, परिवारों का जो विघटन हो रहा है उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि सभी के विचारों में परिवर्तन होता जा रहा है। सभी लोग आज जिस युग में जी रहे हैं, हम लोग एक तरह से देखा जाए तो बहुत परिवर्तन आया है, चाहे वो डिजिटली कहा जाए, चाहे शिक्षा का जो भी विस्तार हुआ उसके कारण हुआ है, चाहे भौतिक चीज़ों के कारण, हमारे सोच, विचार, आचार, सभी चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं परिवार पे पड़ा है, इसीलिए परिवारों का विघटन ज्यादा हो रहा है।

0: सभी लोग जो हम लोग पीछे भाग रहे हैं भौतिकता के, इसके कारण जो परिवार का विघटन हो रहा है, उससे एक नुकसान और भी हो रहा है कि हम सभी अपने खून के रिश्तों के भी प्रति जो है पहले की तरह व्यवहार नहीं रखते हैं, दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसे में हमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है। अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा के माध्यम से अपने आचार विचार और संस्कारों से परिवार की महत्ता को समझाना चाहिए। रिश्तों के मायने क्या है ये भी सिखाना चाहिए। अंत में सोनी जी मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बदलते परिवेश में समझदारी एवं धैर्य की आवश्यकता है, और यदि आने वाली पीढ़ी को सुदृढ़ एवं परिवार के प्रति लगाव प्रेम एकजुटता सिखाना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से अच्छे संस्कार और अपनी परंपरा संस्कृति कभी भूलने ना दे, और ये बचपन से होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इसका प्रभाव जो है बिल्कुल नहीं पड़ता। आप लाख उसको सिखाएंगे बच्चों को, आप ये करो आप वो करो, बच्चे बिल्कुल नहीं सीख सकते। इसलिए इस परंपरा को, इस संस्कृति को, इस धरोहर को हम शुरू से ही सिखाने का प्रयास करें। तो अब तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ऐसी चीजें हैं परिवार के बारे में, बदलते परिवेश के बारे में, रिश्तों के बारे में, कि बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा और बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि मैं किसके बारे में कहूँ किसके बारे में ना कहूँ। मेरा लास्ट में बस यही कहना है कि अगर परिवार को मजबूत बनाना है, और पहले की तरह तो परिवार नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ चीजों में अगर सुधार लानी है तो हमें थोड़ा प्रयास करना होगा और धैर्य से समझदारी से काम लेना होगा। तो सोनी जी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि पुनः जो है आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद।
1: हाँ हेलो जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम रूपा है मैम।
1: अच्छा रूपा है जी, आपका आकाशवाणी के गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इला, और मैं आपसे मैडम जानना चाहती हूँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और हमारा परिवार आजकल बहुत तेजी से बदलाव की ओर है, यानी जो हमारी पारिवारिक मूल्य हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो हमारा आज का जो बातचीत का टॉपिक है वो है बदलता परिवेश और पारिवारिक रिश्ते। इस विषय पर आप हमारी श्रोता बहनों से क्या कहना चाहेंगी?
2: आज मुझे बदलता परिवेश और पारिवारिक रिश्ते जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ
1: जी।
2: बदलता परिवेश आज हमारे जीवन के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, और इसका सबसे अधिक असर पारिवारिक रिश्ते पर देखने को मिल रहा है
1: जी।
2: पहले परिवारों में आपसी अपनापन, साथ बैठकर बातें करना, एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज भागदौड़ की जिंदगी में आधुनिक तकनीक ने लोगों को सुविधा तो दी है, पर कहीं न कहीं रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा दी हैं। आज अधिकांश लोग अपने काम, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए कि परिवार के लिए समय निकालना कठिन होता जा रहा। पहले जहां संयुक्त परिवारों में दादा दादी, माता पिता और बच्चे साथ रहते थे, वहीं अब एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। इसका प्रभाव बच्चों के संस्कारों और परिवार के आपसी संबंधों पर भी पड़ रहा है। हालांकि बदलते परिवार के साथ आगे बढ़ना अवश्य है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि परिवार केवल साथ रहने का नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव का आधार होता है। यदि परिवार में संवाद बना रहे और लोग एक दूसरे के भावनाओं को समझे तो रिश्तों की मजबूती हमेशा बनी रह सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम आधुनिकता और पारिवारिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाकर चलें। अपनों के साथ जुड़ाव बनाए रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि मजबूत परिवार ही एक अच्छे संवेदनशील की पहचान होते हैं।
1: जी बहुत खूबसूरत विचार आपके, और आपने बहुत सही बात कही कि तकनीक अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है, खूबसूरती इसी के साथ में है कि रिश्ते को बनाए रखें। तो रूपा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए।
3: नमस्कार, गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में मैं सोनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपना नाम और कहाँ से

0: रही हैं, ये हमें बताएं।
1: नमस्कार सखियों, मेरा नाम दीपशिखा है और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ।
0: दीपशिखा जी, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, आप भी जान रही होंगी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बदलता परिवेश और पारिवारिक रिश्ते, तो इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करिए। हम चाहेंगे कि हमारी सखियों तक आपके विचार पहुँचे।
1: कभी आपने सोचा है, घर पहले जैसे ही हैं, लोग भी यही हैं, फिर रिश्तों में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? आज हम बात करेंगे बदलता परिवेश और पारिवारिक रिश्ते की। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लोगों का रहन सहन बदला, सोच बदली, तकनीक बढ़ी और जीवन की रफ्तार तेज हो गई। पहले लोग कम साधनों में भी खुश हो जाते थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए समय होता था। शाम को पूरा परिवार साथ बैठता था, बातें होती थी, हंसी गूंजती थी और रिश्तों में अपनापन महसूस होता था। लेकिन आज का परिवेश अलग है। आज हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और काम में इतना व्यस्त हो गया है कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। एक ही घर में रहते हुए भी कई बार लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, बड़े अपनी चिंताओं में और धीरे धीरे बातचीत कम होती जा रही है। आज लोग ऑनलाइन बहुत जुड़े हैं, लेकिन ऑफलाइन अपने ही घर में दूर होते जा रहे हैं। हालांकि बदलाव बुरा नहीं होता सकियों, परंतु समय के साथ बदलना भी जरूरी है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बच्चे नए सपने देख रहे हैं, तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इस भाग दौड़ में अगर रिश्तों को समय ना मिले तो अपनापन कम होने लगता है। पहले संयुक्त परिवार अधिक होते थे, दादा दादी की कहानियां, बड़ों का मार्गदर्शन और पूरे परिवार का साथ जीवन को मजबूत बनाता था। आज छोटे परिवार बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन कई बार अकेलापन भी बढ़ गया है। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते अपने आप तो मजबूत नहीं हो रहते, उन्हें प्यार, समय और समझ की जरूरत है। एक छोटा सा कैसे हो, एक साथ बैठकर खाना खाना, माँ की बातें सुन लेना, पिता के साथ कुछ पल बिताना, यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। क्योंकि सखियों, रिश्ते समय मांगते हैं और आज सबसे ज्यादा कमी उसी समय की है। अगर परिवार में कभी मतभेद हो जाए तो चुप रहने के बजाय बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं सखियों, लोग बात करना ही छोड़ देते हैं। हमें नई पीढ़ी को यह सिखाना होगा कि आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कार और रिश्तों की अहमियत समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार और एक दूसरे पर विश्वास, यही परिवार की असली ताकत है। अंत में सखियों, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि बदलता परिवेश जीवन का हिस्सा है। समय बदलता रहेगा, तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन अगर रिश्तों में प्यार, सम्मान और अपनापन बना रहे तो हर बदलाव सुंदर लगने लगता है। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालेंगे, क्योंकि मजबूत परिवार ही एक मजबूत समाज की नींव होता है सखियों। बहुत बहुत धन्यवाद सखियों।
2: कितनी सारी बातें होती हैं जो हम बहनें जानते हैं, समझते हैं, और फिर भी कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि परिवार में कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है। तो हमारी जो बहनों की जो बातचीत है हमने सुनी, उसमें ये निष्कर्ष निकाला है हमने कि बहनों, आप भी अगर किसी से मन मुटाव हो तो मुंह फुला के मत बैठिए, नाराज मत होइए, बातचीत से हल निकालिए। क्योंकि बातचीत जब होती रहती है तो ये जो बातचीत है ये हमारे बड़े से बड़े मन मुटाव को, मन के जो मैल हैं इसको दूर करती है। यानी कि रिश्तों को बचाने की कोशिश जरूर कीजिए और बातचीत को बंद मत कीजिए अगर आप उन रिश्तों को खोना नहीं चाहती हैं।
0: बिल्कुल लीला, और थोड़ा समय अपने परिवार को देने का विचार बनाइए और ये प्रण लीजिए कि हर परिस्थिति में हम अपने परिवार के साथ

0: हम सबके रिश्तों की बगिया ऐसे ही महकती रहे, गुनगुनाती रहे। और बहनों से अब हम विदा लेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।

लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं शैल बाला सरकार। इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं विवाह गीत।

इस सोहर के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। कलाकार थी शैलबाला सरकार। हम आपको बता दें, इन्हीं का गाया लोकगीत आप शाम 6:23 पर कृषि जगत कार्यक्रम में भी सुनेंगे। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद दोपहर समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevati East Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vijitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rothindra Boshu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की दोनों नेताओं के बीच रक्षा पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही

0: आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करें।

0: और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोग

0: लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा। आज है 15 मई यानी बॉलीवुड की धक धक गर्ल, लाखों दिलों की धड़कन माधुरी दीक्षित जी का जन्मदिन। आज के इस सफर में हम बात करेंगे माधुरी जी के बचपन की, उनकी पहली फिल्म की, उनके टॉप गानों की और उनकी शादी के बाद की जिंदगी की। तो बने रहिए मेरे साथ उनके इस खूबसूरत सफर को जानने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं उस गाने से जिसने उन्हें हर दिल की धड़कन बना दिया,

माधुरी दीक्षित जी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि वो बचपन से ही एक ट्रेंड कथक डांसर थी। उनका झुकाव हमेशा से कला की तरफ था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड की रानी बनेंगी। वो तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रही थी। फिर साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें ब्रेक दिया फिल्म अबोध में। फिल्म ज्यादा नहीं चली, कुछ साल उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1988 में आई एन चंद्रा की फिल्म तेजाब। मोहिनी के किरदार में माधुरी ने ऐसा धमाका किया कि पूरा देश झूम उठा। 1 2 3 गाना देश का एंथम बन गया।

0: सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: वाह, आज भी इस गाने को सुनकर पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। तेजाब के बाद माधुरी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल, बेटा, खलनायक, अंजाम और साजन जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। उनकी एक्टिंग की तारीफ तो होती ही थी, लेकिन उनका डांस बॉलीवुड का एक नया बेंचमार्क बन गया। सरोज खान जी के साथ उनकी जोड़ी ने ऐसी कोरियोग्राफी दी जो आज भी आइकॉनिक है। चने के खेत में या फिर हमको आजकल है इंतजार, और फिर आई 1994 की ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन। निशा के किरदार ने उन्हें हर घर की बेटी और बहन बना दिया। चलिए सुनते हैं उसी दौर का एक बेहद मीठा गाना।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार और आज का जो कार्यक्रम है वो है माधुरी दीक्षित स्पेशल। साल 1997 में फिल्म दिल तो पागल है के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला और जब वो अपने करियर की पीक पर थी तब साल 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गईं। लेकिन एक सच्चा कलाकार अपनी कला से कभी दूर नहीं जाता। साल 2002 में वो लौटी संजय लीला भंसाली की देवदास में चंद्रमुखी बनकर। मार डाला गाने में उनके एक्सप्रेशन ने लोगों को रोशनी की तरह चमका दिया। आज वो इंडिया में हैं, रियलिटी शोज जज कर रही हैं, वेब सीरीज कर रही हैं और उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही बेपनाह खूबसूरत है।

सफर रहा है, एक आम लड़की से लेकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार बनने तक का सफर। माधुरी जी ने हमें सिखाया कि लगन, तमीज और एक सच्ची मुस्कान से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। आज के इस शो के सफर में बस इतना ही। अब मैं शिखा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती है आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म रोटी से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: अभी आपने सुना फिल्म सागर का गीत। आवाज थी किशोर कुमार की, जावेद ने लिखा था बोल और संगीत तैयार किए थे आरडी बर्मन ने।
1: मुझे भी कुछ कहना है,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: कुछ न कहूं चुप रहूं मैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पर।
1: लता मंगेशकर और शैलेंद्र की गाय फिल्म बॉबी की हैसियत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम में ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, परिवार जीवन का वह पेड़ है जिसकी जड़ें प्यार और विश्वास से मजबूत होती हैं।
1: और जहां अपने साथ हो वही सबसे खूबसूरत जगह परिवार कहलाती है।
0: और हम आ गए हैं लेकर आपका पसंदीदा युववाणी, जिसमें आज आपके साथ हैं आपकी ये दो रेडियो साथी, मैं जयशालिनी
1: और मैं आस्था। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की, जो कि हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परिवार के महत्व को समझाना और परिवार के बीच प्रेम, एकता तथा सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है।
1: और परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होती है। हम बोलना, चलना, संस्कार सीखना और दूसरों का सम्मान करना सबसे पहले अपने परिवार से ही तो सीखते हैं। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और सुरक्षा का दूसरा नाम है।
0: और आज के आधुनिक समय में लोग अपने काम और व्यस्त जीवन में इतने उलझ गए हैं कि परिवार के साथ समय बिताना कम हो गया है। ऐसे में यह दिवस हमें यह याद दिलाता है कि परिवार के साथ बिताए गए हर पल बेहद अनमोल होते हैं।
1: और जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। एक मजबूत परिवार समाज को मजबूत बनाता है और एक अच्छा समाज देश की प्रगति का आधार होता है।
0: और हमें अपने परिवार के हर सदस्य का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों सदस्यों से प्रेम करना चाहिए। यदि परिवार में एकता और समझ बनी रहे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि परिवार वह जगह है जहां जीवन शुरू होता है और प्यार कभी खत्म नहीं होता।
1: बहुत सुंदर जयशालिनी, क्या बात कही है तुमने। वैसे दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आज के ही दिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जयंती भी मनाते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के महान विद्वान, उत्कृष्ट लेखक, समाज सुधारक और आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं।
0: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा देने का कार्य किया। वे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक भी रहे और अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध भी बनाया।
1: उनके समय को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा जाता है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज सुधार और राष्ट्र जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने अनेक कवियों और लेखकों को प्रेरित किया, जिनमें मैथिली शरण गुप्त जैसे महान साहित्यकार भी शामिल हैं।
0: आचार्य जी ने हिंदी भाषा को सरल, शुद्ध और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान, अनुशासन और परिश्रम से समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।
1: और आज उनकी जयंती पर हम सभी को उनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे और साहित्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच फैलाएंगे।
0: और अंत में मैं इस महान साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को शत शत नमन करती हूँ।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: दोस्तों आकाशवाणी बहुत ही जल्द 90 वर्ष का होने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने विश्वविद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें इस बार हम गए थे डालिम सनबेम स्कूल सिगरा वाराणसी में, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे आशुतोष कुमार और उनके सहयोगी थे मनीषा राय और आलोक श्रीवास्तव, और इस क्विज को होस्ट किया था सौरभ कुमार और जयशालिनी ने। तो आइए सुनते हैं इस क्विज को।

0: आवाजें जो कभी खेतों की मेड़ों तक पहुंची, तो कभी शहरों की भागती सड़कों के बीच उम्मीद बनकर गूंजी।
1: एक ऐसा माध्यम जिसने समय के साथ केवल समाचार नहीं सुनाए बल्कि भावनाओं, संस्कृतियों और पीढ़ियों को जोड़े रखा।
0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उस अमूल्य धरोहर की जिसने पिछले 90 वर्षों से देश की चेतना को स्वर दिया है। जी हाँ,
2: हमारी अपनी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी, जहाँ शब्द सिर्फ बोलते नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहाँ संगीत, साहित्य, संस्कृति और जन जागरण एक साथ श्रोताओं तक पहुँचते हैं।
0: और इसी गौरवशाली 90 वर्षीय यात्रा को समर्पित आज आयोजित की जा रही है एक विशेष विद्यालय स्तरीय क्विज प्रतियोगिता। और इसी क्रम में आज हमारी टीम आ पहुंची है डालिम्स सनबीम स्कूल सिगरा वाराणसी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं जयशालिनी।
0: और मैं हूं सौरव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी एट 90 इयर्स विशेष क्विज प्रतियोगिता में।
1: आज की इस प्रतियोगिता में डालिम सनबीम की प्रतिभाशाली टीमें भाग ले रही हैं। तो आइए गर्मजोशी से स्वागत करते हैं सभी प्रतिभागियों का।
0: अब सभी टीमों से क्रमवार संक्षिप्त परिचय लेंगे। सबसे पहले बारी टीम ए की।
3: My name is Navya Kumari. I am studying class 5th.
4: My name is Dania Jamal. I study in class 5th.
5: My name is Ashad Ahmad. I study in class 7th.
6: My name is Vihan Dubey and I study in class 8th.
7: My name is Vansh Nagar and I study in class 5th.
0: अब बारी टीम बी की।
8: My name is Shanvi Singh and I study in 5th.
9: My name is Sakshi Shivastav. I study in 4th A.
10: My name is Hamisha Shri and I study in class 5th A.
11: My name is Aradhya Singh and I study in class 5th A.
12: My name is Arika Yadav and I study in class 6th A.
0: अब टीम सी अपना परिचय दें।
13: My name is Vaibhav Singh. I study in class 8th A.
14: My name is Sejal Kumari. I study in 4th A.
15: My name is Rehmat Fatma. I study in class 5 A.
16: My name is Priyamvada Tiwari. I study in class 5th.
17: My name is Arap Pathak and I am studying in 9th A.
0: दोस्तों, प्रतियोगिता प्रारंभ करने से पहले आइए नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला चरण यानी कि खंड एक में विकल्प राउंड है। इसमें कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प होंगे यानी कि ऑप्शंस, ठीक है। सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे। दूसरा चरण डायरेक्ट आंसर राउंड है। इसमें भी कुल 6 प्रश्न होंगे, कोई विकल्प नहीं दिए जाएंगे। सही उत्तर पर इसमें भी आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है।
1: बात तीसरे और सबसे रोमांचक चरण की यानी बजर राउंड। इसमें कुल आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। टीमों को बजर दबाकर उत्तर देना होगा और सही उत्तर पर मिलेंगे आपको 3 अंक, पर गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। आपको ज्ञात हो कि पहला और दूसरे राउंड में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। साथियों, यहाँ ज्ञान के साथ साथ सही विकल्प चुनने की भी समझ भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो ध्यान से खेलिएगा। क्या आप सभी तैयार हैं? ओके, सो टीम ए, योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर।
6: ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
1: आपका जवाब बिल्कुल सही है टीम ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणादायी रचनाओं में गिना जाता है। अब हमारा दूसरा सवाल है आज का टीम बी से। आकाशवाणी का राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 23 जुलाई, 15 अगस्त, 3 अक्टूबर, 7 नवंबर।
4: जुलाई।
1: इट्स राइट, अब गुड ट्राई ऑडियंस। 23 जुलाई 1927 को भारत में नियमित रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। यह दिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC के तहत बंबई स्टेशन से

0: देश के पहले व्यवस्थित रेडियो प्रसारण की याद में मनाया जाता है।
1: हमारा अगला सवाल टीम सी से है। टीम सी, आप तैयार हैं? सवाल है, प्रसार भारती के अंतर्गत कौन से प्रसारण माध्यम आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन, ऑप्शन बी दूरदर्शन और PIB, ऑप्शन सी आकाशवाणी और इसरो, ऑप्शन डी दूरदर्शन और यूनेस्को।
2: आकाशवाणी एंड यूनेस्को।
1: अफसोस, ये जवाब गलत है। ऑडियंस से कोई ट्राई करना चाहेंगे? जी बताएं।
2: आकाशवाणी एंड दूरदर्शन।
1: बिल्कुल सही जवाब, ऑडियंस से एक बेहतर प्रयास हुआ है। साथियों, हम आपको बता दें कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसका सही जवाब है। प्रसार भारती भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक है, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्य करते हैं। अगला सवाल टीम ए से। टीम ए, तैयार हैं आप सभी? आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
3: आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला या फिर तमिलनाडु।
1: जी बताएं।
4: आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
1: बिल्कुल सही जवाब टीम ए। आकाशवाणी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यहीं से राष्ट्रीय स्तर के कई महत्वपूर्ण प्रसारण नियंत्रित किए जाते हैं।
0: उनका अगला सवाल टीम बी से है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं संविधान सदन, संविधान सभा, कांग्रेस या फिर व्हाइट हाउस।
2: ऑप्शन रिपीट करें।
0: संविधान सदन, संविधान सभा, कांग्रेस, व्हाइट हाउस।
2: संविधान सभा।
0: अफसोस टीम बी, आपका जवाब गलत है। ऑडियंस से कोई ट्राई करना चाह रहा था?
2: कांग्रेस।
0: अफसोस, ये जवाब गलत है।
2: व्हाइट हाउस।
0: ये जवाब भी गलत है।
2: व्हाट इज ऑप्शन नंबर ए?
0: संविधान सदन।
2: संविधान सदन।
0: ये जवाब आपका सही है। अब टीम सी से हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, शर्मिला टैगोर। टीम सी, आपका जवाब बिल्कुल सही है।
1: तो दोस्तों, पहले चरण का सफर यही समाप्त होता है और अब एक नजर स्कोर बोर्ड पर।
3: तो हमारी टीम ए को मिले हैं 6 अंक, टीम बी ने अपना खाता नहीं खोला है और उन्हें मिलते हैं 0 अंक यानी कि 0 मार्क्स। टीम सी को मिले हैं 3 अंक।
1: प्रतिभागियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। सभी एक कश्मकश में हैं कि भाई कैसे आगे निकला जाए, है ना? और सच कहूं तो प्रतिस्पर्धा में ये बेहद आम और जरूरी भी हो जाता है। लेकिन साथियों, आपको बिल्कुल शांत दिमाग के साथ खेलना है, क्योंकि शांत दिमाग आपकी सोचने की क्षमता को और बेहतर बनाती है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है और अभी बहुत कुछ बाकी है। अब चलते हैं दूसरे चरण की तरफ।
0: जी हाँ, अब समय है दूसरे चरण का, यानी डायरेक्ट आंसर राउंड का। साथियों ध्यान दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ कोई विकल्प नहीं होंगे, सिर्फ आपका ज्ञान और त्वरित सोच ही आपको अंक दिलाएगी। तो शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। टीम ए, आपसे हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
2: जनवरी 1950।
0: वेरी गुड टीम है, आपने बहुत सही जवाब दिया है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना और देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इसी के साथ टीम बी से हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?

0: राजस्थान।
1: वेरी गुड टीम बी, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है टीम सी से, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
0: पैसिफिक ओशन।
1: योर आंसर इज राइट टीम सी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
2: अब अगला सवाल टीम ए से, फिर से हम टीम ए के पास आ रहे हैं। आप रेडी हैं टीम्स? ओके, सो क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
3: बरगद।
2: बिल्कुल सही जवाब, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। साथियों हम आपको बता दें कि इसे अंग्रेजी में बनियान ट्री कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। सवाल के लिए हम फिर से जा रहे हैं टीम बी के पास। टीम बी तैयार हैं आप? सवाल है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें आपका जवाब नहीं मिल रहा है टीम बी, तो अब हम ऑडियंस के तरफ जाना चाहेंगे। ऑडियंस में किन्हीं को पता है? जी बताएं।
0: Who means कौन?
2: फुल फॉर्म ऑफ WHO पता है किसी को? आपको पता है? बताएं।
0: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
2: बिल्कुल सही जवाब, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल के लिए हम फिर से टीम सी की तरफ जा रहे हैं। सवाल यह है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
0: नाइल रिवर।
2: बिल्कुल सही जवाब, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है।
1: दोस्तों 6 प्रश्नों के बाद अब ये राउंड समाप्त होता है, प्रतियोगिता अब रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है।
2: जी हाँ साथियों, और दूसरे चरण के बाद हमारी टीम के स्कोर इस प्रकार हैं। टीम ए ने अर्जित किए हैं 6 मार्क्स, टीम बी को मिले हैं 3 मार्क्स और टीम सी 6 अंकों के साथ हैं। साथियों अब शुरू होने जा रहा है सबसे चुनौतीपूर्ण चरण, जो कि है बजर राउंड। तो धड़कनों को थाम लीजिए और फोकस को और भी बढ़ा लीजिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तेजी भी जरूरी है और सटीकता भी। गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी और अपने हाथ टिका लीजिए बजर पर और तैयार हो जाइए इस रोचक सफर के लिए। और इस राउंड का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? टीम ए ने सबसे पहले बजर दबाया है, अपना जवाब बताइए टीम ए।
3: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
1: आपका जवाब बिल्कुल सही है टीम ए। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, जो कि है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है?
0: गंगा रिवर डॉल्फिन।
1: योर आंसर इज राइट टीम बी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामचरितमानस के रचयिता कौन है? टीम, अफसोस टीम सी, आपका ये जवाब गलत है और इसी के साथ अब आपके 1 नंबर डिडक्ट होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है तुलसीदास। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? टीम ए ने सबसे पहले बजर दबाया है, अपना जवाब बताइए टीम ए।
3: लता मंगेशकर।
1: अफसोस आपका ये जवाब गलत है टीम ए, कोई और ट्राई करना चाहता है? इसका सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा प्रसिद्ध देशभक्ति गीत महान कवि और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है।
2: हमारा अगला सवाल जो कि हम पूछने जा रहे हैं, आप तैयार हैं सारी टीम्स? सवाल है वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? किसी ने

0: बजर नहीं दबाया है तो हमें आंसर नहीं मिल पाए हैं दोस्तों। हम बता दें आपको कि वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप सभी? अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? टीम बी ने सबसे पहले बजर दबाया है। टीम बी, अपना आंसर बताएं आप।
1: 13 फरवरी।
0: एग्जैक्टली, सही जवाब है 13 फरवरी। दोस्तों हम आपको बता दें कि विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। यह दिन रेडियो के महत्व और जन संचार में उनकी भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। टीम्स, आप सभी फिर से तैयार हो जाइए। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? टीम ए ने पहले बजर दबाया है। टीम ए बताएं।
1: दैनिक जागरण।
0: अफसोस टीम ए, आपके एक मार्क्स काट लिए जाएंगे क्योंकि आपने गलत जवाब दिया है। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? अफसोस इसका जवाब हमें नहीं मिला है साथियों। तो हम आपको बता दें कि बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की इस समाचार पत्र के संपादक थे। साथ ही इन्होंने भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता की नींव रखी थी। पहली बार इसका संपादन तब के कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, शुरू हुआ था। अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए आप सभी। आखिरी प्रश्न है, प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं?
1: सुरी।
0: गलत जवाब टीम बी, आपके एक अंक माइनस कर लिए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब ऑडियंस के तरफ से हमें सही जवाब मिले हैं साथियों। इसका सही जवाब है तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन विश्व प्रसिद्ध तबला वादक हैं।
2: तो 8 प्रश्नों के बाद ये राउंड अपनी समाप्ति पर, और अब वह पल जिसका सभी को इंतजार था। तो अब एक नजर स्कोरबोर्ड पर। टीम ए को मिले हैं 13 अंक और टीम बी 8 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, और इसी के साथ टीम सी को भी मिले हैं 8 अंक।
3: शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन टीम भावना के साथ आज की आकाशवाणी एक्ट 90 विशेष क्विज प्रतियोगिता की विजेता टीम बनी है टीम ए।

0: विजेता टीम को हार्दिक बधाई और सभी प्रतिभागियों को शानदार सहभागिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत बात होती है उससे जुड़ी आपकी भावनाएं, आपकी यादें और आपके अनुभव। आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियों के जीवन को अपनी आवाज से छुआ है, तो अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे यहाँ उपस्थित प्रतिभागियों और शिक्षकों को। यदि आपके मन में आकाशवाणी से जुड़ी कोई विशेष स्मृति, कोई प्रेरणादायक अनुभव या आज की इस क्विज प्रतियोगिता से जुड़ी कोई भावना हो, तो आप मंच पर आकर उसे हमारे साथ साझा करें। हो सकता है बचपन में दादा दादी के साथ सुना गया कोई रेडियो कार्यक्रम, विविध भारती का कोई प्रिय गीत हो, या फिर समाचारों की वह परिचित धुन, या फिर आज की प्रतियोगिता का कोई यादगार पल।
1: क्योंकि आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और यादों का हिस्सा रही है।
0: तो आइए कुछ खूबसूरत यादों और अनुभवों को शब्द देते हैं। हम आमंत्रित करेंगे यहाँ मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स और ऑडियंस को।
2: आप लोग के साथ क्विज खेल के बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसे ही चाहूंगा कि आप ऐसे और करते रहे क्विज हमारे स्कूल में।
3: मेरा नाम वंश नागर है और मुझे भी ये क्विज खेल के बहुत अच्छा लगा और आकाशवाणी के साथ मुझे और ज्यादा अच्छा लगा।
4: मेरा नाम विहान दुबे है और मुझे भी क्विज खेल के अधिक प्रसन्नता हुई और मजा भी आया। इससे मुझे अधिक नॉलेज मिली आकाशवाणी के बारे में और अपने भारत के बारे में, और इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे टीचर्स को और आकाशवाणी को। थैंक यू।

0: नमस्कार, मैं प्रतिभा त्रिवेदी, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य डार्लिंग सनबीम ग्लोबल स्कूल सीकरा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो आकाशवाणी की टीम आई और क्विज कंडक्ट किया, बहुत बहुत सुंदर अनुभव रहा। बच्चों में एक एक्साइटमेंट थी इसको लेकर के, और हमें खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि छोटे में हम लोग ने काफ़ी रेडियो पे कार्यक्रम सुनते आए। अभी तक मैं रेडियो से जुड़ी हूँ। आज की पीढ़ी में रेडियो के प्रति झुकाव कम हो रहा था, इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वापस लोग रेडियो की तरफ झुकेंगे। एक और चीज़ है कि जब समय आता है तो कई बार दूसरे जो मीडिया के संसाधन हैं वो बंद हो जाते हैं, उस समय जो रेडियो है आपके साथ रहता है। मुझे आज तक याद है कि सुभाष चंद्र बोस ने कठिन समय में जब एड्रेस किया था, लोगों को था कुछ समय वो दिखे नहीं, तो उन्होंने कहा मैं सुभाष बोल रहा हूँ। रेडियो स्टेशन से उनका एक ये लाइन आज़ादी के संग्राम में एक ऐसी लहर चढ़ गया। उसी तरह का कुछ मुझे लगता है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो बच्चों में वापस से कनेक्ट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक आकाशवाणी टीम।
1: आकाशवाणी की यह 90 वर्षों की यात्रा सिर्फ प्रसारण का इतिहास नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना की आवाज है,
2: और आज की यह प्रतियोगिता इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी ज्ञान, संस्कृति और जागरूकता की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
1: श्रोताओं, हम सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, निर्णायकों और श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं। और श्रोताओं, अगर आप भी आकाशवाणी वाराणसी के किसी भी कार्यक्रम या फिर क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी महमूरगंज, वाराणसी। श्रोताओं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है youth_AIR वाराणसी या फिर AIR_वाराणसी।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ थी मैं जयशालिनी
1: और मैं सौरभ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

0: और खाने में नमक स्वाद अनुसार होना बेहद जरूरी होता है।
1: ठीक वैसे ही अगर हमारे पास अच्छे शब्दों का भंडार होता तो
0: तो दोस्तों, हमारी बातचीत, हमारी बोलचाल और भी प्रभावशाली और अट्रैक्टिव हो जाती है।
1: चलिए फटाफट से चलते हैं आज की यूथ डायरी की ओर।
0: आज का हमारा हिंदी शब्द है निष्पादन, जिसका अर्थ होता है वह माध्यम जिसके द्वारा कोई पक्ष किसी अनुबंध या विलेख पर मुहर लगाकर या हस्ताक्षर करके उसमें प्रवेश करता है और ऐसा करके उसे कानूनी रूप से प्रभावी बनाता है।
1: और इसके पर्यायवाची शब्द होंगे संपादन, पालन, पूर्णता और निर्वहन।
0: हाँ जी दोस्तों, लगे हाथ क्यों ना इनके उदाहरण भी देख लेते हैं, जो कि है व्यापार में ब्रोकर ने शेयर के लिए सर्वोत्तम मूल्य पर ऑर्डर का निष्पादन सुनिश्चित किया।
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है एब्सिक्यूएस, OBSEQUIOUS, जिसका मतलब होता है मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू प्लीज और अग्री विथ समबडी, स्पेशली समबडी हु इज इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल।
0: साथ ही इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है ही वॉज सराउंडेड बाई अब्सिक्यूअस फैंस।
1: एंड इट्स सिनोनिम्स आर गवर्नेबल, रिप्रेस्ड, कंफर्मेबल।
0: दोस्तों, आज की यूथ डायरी की प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
1: और हर बीतता दिन इतिहास में तब्दील हो जाता है दोस्तों। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास हुआ आज के दिन इतिहास में।
0: सन 1907 में स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर, जो कि भगत सिंह जी के साथी थे, उनका जन्म हुआ था।
1: और सन 1967 में आज ही के दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ था।
0: सन 1995 में एलिसन गॉगर ग्रिप्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी थीं।
1: और आज ही के दिन सन 1940 में दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने कैलिफोर्निया में पहले रेस्टोरेंट के साथ की थी। आज था वक्त हो चला है QOTT का, तो क्यों ना आज के क्वेश्चन को बता दिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आज का सवाल, जो कि है आकाशवाणी का मुख्यालय कहाँ है।
1: और इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कि कल हमने आपसे क्या सवाल पूछा था और उसका सही जवाब क्या है। तो कल हमने आपसे प्रश्न किया था महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है 25 नवंबर।
0: जय शाली, विनर्स के नाम भी बता ही देते
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल आस्था।
0: विनर्स जो हैं उनका नाम है मुकेश कुमार प्रजापति, सिगरा चंदा चंदौली, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना और बाबू दिव्यांश नागनपुरे।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से, और इसी के साथ ग्राम खैरगांव मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण चौहान।
0: और हाँ दोस्तों, आपको याद तो होगा ही कि पूछे गए सवाल का सही जवाब कहाँ भेजना है आपको।
1: अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, तो फटाफट से नोट कीजिए हमारी इंस्टा आईडी youthairvns@gmail.com,
0: या फिर आप आपके आंसर्स हमें हमारे मेल आईडी youthairvns@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
1: और दोस्तों हमेशा की तरह हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आज की रोजगार सूचना, जो कि आई है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से।
0: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में सिपाही तकनीक एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर के 1996 पद भरे जाएंगे। आवेदन शुरू 20 अप्रैल से हो चुके हैं और आवेदन करने की लास्ट डेट 19 मई 2026 है।
1: और अगर इसके योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आयु आपके न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं पास होना ज़रूरी है, और अगर आयु की बात करें तो 21 से 27 वर्ष तक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट RECT.CRPF.GOV.IN पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

0: शालिनी, तुम्हें नहीं लगता कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता आते रहते हैं? लेकिन कई बार हम छोटी-छोटी बातों को लेकर निराश हो जाते हैं और नकारात्मक सोच हमारे मन पर हावी होने लगती है। यही नहीं, नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, हमारी खुशियों और हमारे रिश्तों को कमजोर कर देती है।
1: हाँ बिल्कुल आस्था, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नकारात्मक सोच जो होती है ना, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरे से ये काम नहीं होगा, या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता रहता है, तब तक हम अपनी क्षमताओं को खुद ही सीमित कर लेते हैं।
0: और लेकिन याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह भी आती है।
1: और अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें सकारात्मक सोच अपनानी होगी। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही तुमने शालिनी। और ना, नकारात्मकता से बचने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए।
1: और साथ ही अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, और हमें दूसरों की आलोचना करने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। मुस्कान, अच्छा व्यवहार और सकारात्मक शब्द किसी के जीवन में नई उम्मीद जगा सकते हैं।
1: आइए दोस्तों, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखेंगे और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे।
0: और दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए आपके साथ हमारा सफर सिर्फ इतना ही था। लेकिन लेकिन लेकिन कल फिर मिलेंगे आपके किसी नए रेडियो साथी के साथ, आपके अपने युववाणी में।
1: तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए मेडिकल प्रवेश बदे नीट यूपी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून के आयोजित कैदे का घोषणा कैदे हो। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान देने है। वहां के कहने की इस समय में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाला नीट यूजी परीक्षा अगला साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी जरिया से होगी।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक परीक्षा के समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री बताने की विद्यार्थियों के परीक्षा बदे अपने पसंद का शहर चुनने का मौका मिली। दुनिया भर में कच्चा तेल के दाम में आयल उछाल के बादे तेल कंपनी पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपया प्रति लीटर का बढ़ोतरी कर दिले हैं। एगो रिपोर्ट।
2: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 94.73 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 87.81 रुपए प्रति लीटर। वहीं वाराणसी में पेट्रोल की कीमत 95.83 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 89.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रयागराज में पेट्रोल 95.30 रुपए जबकि डीजल 88.30 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक की वृद्धि की गई है, तब भारत में पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिला में 208 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 79 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहले कि वैश्विक संकट से देश के उबारे बदे हर नागरिक के अपन योगदान देवे खातिर तैयार रहे के चाहें।
3: ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मैं सभी ज्वेलर्स से सराफा व्यवसायों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, उसी को रिपेयर करवाना, उसी को रिमॉडलिंग करवाना, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, अपना पैसा बचाना है, देश का पैसा बचाना है और देश का पैसा बचा करके इस संकट, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को भरने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहरिया बादे गोरखपुर पहुंचने हैं। वहां के बिहने गोरखपुर में प्रदेश के चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन कई के नई धरब। एगो रिपोर्ट।
4: गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग स्थित ताल नंदोर में बनने वाला यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। निर्माण के लिए यह पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। स्टेडियम बनाने के लिए अलाइनमेंट, मिट्टी भराई, लेवलिंग और बड़े निर्माण उपकरणों को लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। लगभग 50 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेने, साथ ही ओइजा के 495 करोड़ रुपया से

0: एजेंसी की लागत वाली कई गो परियोजन को स्थलीय निरीक्षण कैले है। कौशाम्बी जिला के करारी थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव के लगे काली देर रात ही एगो सड़क दुर्घटना में चार गो नौजवानन के मौत हो गई, वहीं एगो नौजवान गंभीर है घायल हो गई। ये दुर्घटना वो समय भइल जब एक गांव के रहवैया पांच गो नौजवान मोटरसाइकिल पर बैठ के एगो ब्याह समारोह में जात रहे और उनकर मोटरसाइकिल का सामने से आ रहा ट्रैक्टर ट्राली से भीषण टक्कर हो गई। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वक्त हो चला है आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी देने का, तो आइए जान लेते हैं पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आज हम आपको सुनाएंगे एकल तबला वादन। कलाकार होंगे श्री विशाल उद्धव। स्वास्थ्य पत्रिका, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10:00। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। हमारे आज के कलाकार हैं

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम कृषि जगत। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे सब्जियों में कीट नियंत्रण की जैविक विधि विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर संदीप कुमार से।

ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको जानकारी दे दें कल के कुछ कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें। गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर। स्वास्थ्य चर्चा ये कार्यक्रम आप सुनेगा कल प्रातः 6:35 पर। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुनेंगे कल प्रातः 6:40 पर।

गुड मॉर्निंग बनारस, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल प्रातः 7 बजे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल प्रातः 7:31 पर सुनेगा सितार वादन। कलाकार होंगे डॉक्टर अंजलि।

ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

0: आपकी कसम, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी के थे और संगीत आरडी वर्मन का।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।

0: आयोजित कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000 वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000 वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्। औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुं भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000 वर्षस्य ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतृणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम
1: राम राम हो समारू भैया
0: रघुओं को राम राम मोहन भैया।
1: का हाल चाल है खेती किसानी के समारू भैया?
0: अरे खेती किसानी के मत पूछा, बहुत बढ़िया हाल चाल है।
1: हाँ
0: और गेहूँ भी दबाए गल हमार, और चना मटर तो पहले ही से हो गल रहल, और
1: अच्छा
0: जौ भी थोड़ के सरसों भी भयल है।
1: अच्छा तो ये कुल जैसे दाए के लिया के घर में फेंकले हुआ कि ओकर भंडारण भी कैला?
0: ए भैया तो देखबे कैला कि हमारे किसान मन ही टाइम समय कम मिला ला, तो
1: हाँ
0: जौन आयल गेहूँ जैसे आयल तो बोरा भर के ओसारा में पड़ल बा,
1: हाँ
0: जौ भी इसी पड़ल बा, सरसों भी थोड़ा सा छपसेरी मटर भर ला, तो ऊ कौन जरे रखल बा कौन जरे कोठली में, और
1: हाँ
0: वही के लमसम एक मन बेसी चना भी भर बा, वो रखल बा भी डब्बा में।
1: आ ओकरे संगे संगे जो ना कि शादियों ब्याह में अगर बहुत बिजी रहला है जो
0: यही
1: ना
0: बदेना ना रखपोली भंडार जो कहला ना, वही
1: हाँ
0: जैस के तस्वीर रखल बा है, अब यहाँ शादी नौका नौता कारी में, अब धीरे धीरे समय बीतल जाए, अब जानत हुआ तो ठेचा सनई छींटे के जुगाड़ करे कि रखी भंडारण करी कि का करी, कुछ समझ में आओ तो
1: नहीं तो
0: मोहन
1: देखा
0: भैया।
1: भैया जो ना कि समारू भैया तू तो देखा चतुर किसान हुआ अब तो हम का बताई,
0: हाँ
1: लेकिन जो ना कि ये समय जोन भंडारण का काम है ना ओके देखा पहले करे के चाहिए।
0: नहीं तो बात बहुत नगद कहा हुआ।
1: काहे से कि भैया देखा भंडारण जो अनाज करल जाला ना ओके देखा तेज धूप में पहले जो ना बाहरे निकाल के सुखवा लेल
0: और
1: जाला
0: नमी न
1: बढ़िया से,
0: रहा है।
1: उनमें नमी न रहे अंडर रहे तो देखा 10 से 12% ही नमी रहे खाली,
0: अच्छा
1: ज़्यादा न रहे मतलब नमी। आ एक चीज़ और कहम ना कि देखा कुछ दिन में अगर जब बरसात हो जाए मौसम एकदम नम हो जाए
0: तब सुखाई ना
1: तब
0: जल्दी।
1: भैया देखे ओके जो ना भंडारण में असुविधा हुई।
0: अच्छा
1: आ ई
0: अच्छा
1: कहब कि जब भंडारण करें ना तो देखा ये बात का ध्यान रखे की जरूरत है कि चाहे कोठिला में रखा आ चाहे बखारी में रखा चाहे बोरा में रखा कुलहीन के बढ़िया से झाड़ के आ उनमें जो ना कि तनिक कीटनाशक दवा वगैरह का छिड़काव करके तब ओके रखे। आ इहो बर्स का ध्यान रखे कि देखा जहाँ जहाँ पर जो ना कि नमी हुआ वो जगह पर जो ना कि एकदम भंडारण ना करे के चाहिए
0: एक बतिया तो भुला गीला
1: का।
0: कि दीवार में सटा के बोरा ना रखा।
1: हाँ अभी बताओ वाला रली है तले तो पहले ही कह देला तू जो
0: अच्छा
1: ना ओके कहे वाला रली है
0: तो बता दे,
1: कि
0: वो बता
1: देखा
0: दे।
1: बोरा जो है ना कि बोरा के सटाए के दिवाली के ना रखे काहे
0: अच्छा
1: से कि देखा दीवाल में नमी रह ले वो नमी जो ना बोरा के से आ जाए जो ना अनाज में
0: अच्छा
1: तो ऐसे जो ना अनाज खराब हो के संभावना रहला हमें फफूंदी जैसन रोग लग जाइए
0: तो सबके खराब कर दी।
1: सबके खराब कर दिए। तो भैया ये लिए जरूरी है कि देखा भंडारण इतना मेहनत से पहले तक किसान भाई लोग जो ना पैदा करत हुआ आ कितना मेहनत से घरे में लिया होत हुआ भूसा अनाज अब ओके अगर सही ढंग से ना रखबा तो कुल मेहनत करके का करवाओ जो ना।
0: सही कलम है, वह देखा हमारे का पूजी है।
1: हाँ
0: अगर नुकसान हो जाए भंडारण में तो
1: हाँ
0: का
1: हाँ
0: फायदा पैदा कहले का,
1: हाँ भैया तो
0: यही वजह हमारी कहले जा किसान भाई लोग से कि
1: हाँ
0: जौन साल भर का पूजी है बढ़िया से ओके सुजन बतौला बोरा सुखा के,
1: हाँ
0: कोशिश ही रहे कि नया बोरा रहा है।
1: एकदम सही कला नया बोरा रहे बढ़िया रहे आ एक
0: हाँ
1: बोरा फटाह बुटाह के ना रहे कि वह हर साल
0: हाँ
1: वही के में प्रयोग में लिया होत हुआ। आ तनी जो ना कि भैया देखा कीमती चीज़ होला तो जिससे होला ना तो ये लोग बड़ा सहेज के रखा ना बक्सा के चार कपड़ा के नीचे वैसे अनाज भी हुआ अनाज के भी बढ़िया ढंग से रखा ताकि उनमें मूस न लगा और में
0: भैया
1: फफूदी न
0: सबसे अधिक
1: लगा।
0: नुकसान मुंह से हो जाए।
1: हाँ
0: एकदम बात सही कहा।
1: हाँ अब फटल बोरा रही तो पता चलेगा कि मूस वही में से घुस जाइया कुल जितना अनाज है कुल खा जाइया।
0: अरे ये बतावा
1: हाँ
0: मोहन भैया, हमारे के लड़कैया में कोठली रहे कोठली रहे,
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: और बड़े बड़े गगरी के लेवन करके मट्टी के बनावल जौ में रखा है,
1: हाँ
0: अब तो
1: हाँ
0: बढ़िया बढ़िया बखार बाजार में आ गल है।
1: हाँ उनमें भी लोग भंडारण करत हुआ।
0: हाँ कर दो ना, तो
1: हाँ
0: बढ़िया से रख दे उमन नमी जो बतौला के सुखवा के, अभी देख लें कि 15 से 10-12% रह गल फीसदी नमी, तो अपन उमन रख दे।
1: आ देखा यूँ कहब ना कि भैया देखा

0: भंडारण जोन होला ना, वहाँ इसने जगह जरूर करें कि जहाँ की हवा पानी आवत रहा, हवा वगैरह की व्यवस्था रहे। हाँ
1: ये तो बहुत बढ़िया बात बतौला भाई। हाँ सही कहला कि हवा का आवागमन रही तो
0: हाँ
1: फसल सुरक्षित रही हमन का।
0: हाँ आ नहीं तो इसे मतलब जिसे भर के रख देला ओकर ध्यान ना देला तो पता चले कि अंदर अंदर में घुन लग जाइया।
1: तब दिक्कत हो जाए वो फिर पिसाओ में।
0: हाँ अब तो तू सोचबा कि जो ना कि बहुत बढ़िया ढंग से रख ले, लेकिन अंदर
1: हाँ
0: अंदर घुन होके खा गई ना, खोखला कर देना खाए के अनाज के।
1: सही कहला।
0: तो ई सब का देखा भंडारण में ध्यान रखे के चाहिए। आ देखा एक बात और कहम ना जो
1: का
0: ना समारू भैया, कि
1: भैया
0: देखा आज हुआ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: ये तो बहुत बढ़िया बात है बतौला है। पंच लोग जान जाए कि काहे बदे कौन दिवस मनावा जाला।
0: भैया देखा परिवार से देखा समाज के रचना होले, आ परिवार से कौनो आप मनई के जो है ना कि विकास होला।
1: एकदम चला। देखा जब अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस बतौला है
0: हाँ
1: तो हर दिवस का उद्देश्य होला कि परिवार का वैल्यू वजन का महत्व का है।
0: हाँ
1: मानोगे नहीं।
0: हाँ हाँ
1: देखा पहले के जमाने में संयुक्त परिवार रहा,
0: हाँ हाँ
1: पता न लगे कि दुख तकलीफ अपने बायल हो।
0: हाँ हाँ एकदम
1: ब्याह
0: सही।
1: शादी करे के भैया कह देना बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ के नाम लिखवाए ही ना जाके, बहू जाके लिखवाए कुछ कमा के लिए, हमारे भतीजा के पकड़ के चलो पर साथे पढ़ो मेरे साथे। तो
0: हाँ
1: कहे का मतलब कितना बढ़िया लगेला हो। तब लेकर
0: हाँ
1: मोटकी रोटी खाए के माँ आवाज आवाज का तो दिक्कत हो,
0: हाँ हाँ
1: भौजी से कदाई भाई को जरे तो मोटकी रोटी भी बन गल।
0: भैया ई तो एकदम सही बात कहला। ओकरे संगे संगे देखा यो कहब ना कि जोन संयुक्त परिवार होला ना, उनमें देखा जोन बच्चा लोग हो ना, उनकर परवरिश और उनके अंदर संस्कार
1: बहुत
0: बहुत बढ़िया से जो ना कि जला। और मैंने देखा दादा हुआ, दादी हुआ, चचा हुआ, चाची हई, बड़का
1: सबका
0: बाऊ हुआ,
1: सबकर महत्व समझिए, प्यार समझिए।
0: हाँ सबकर जो है कि उनके संरक्षण मिलेला, और सबकर प्यार दुलार मिलेला, सबकर जो है कि उनके जो निर्देश आदेश मिलेला, ओकरे हिसाब से वो चले ना, तो देखा आगे बढ़ के एक अच्छा इंसान बनना।
1: इंसान में देखा संस्कार परिवार से मिलेला। तो
0: हाँ
1: जब देखना कि बाऊ के बाद बब्बा के बाद हमारे पापा हमारे
0: मानत
1: बाऊ
0: बाणे। हाँ
1: चचा मानत हुआ, तो उसे ही उनके मन में कि अपने भाई के प्रति प्यार करी। तब का होला कि कौन जरे वो परिवार टूटत नहीं, और कौन घोर विपत्ति आ गल ओहो में
0: हाँ
1: सब साथ हा, तो विपत्ति के पता नहीं चली।
0: एकदम सही कहला भैया। देखा देखा देखी पुण्य या देखा देखी पाप, लड़का जोन देखा ना अपने बाप मतारी का, वह
1: हाँ
0: देखा जो ना गुप्त रूप से ओकर नकल करे ना,
1: एकदम सही कहला
0: तू ना
1: भैया।
0: कहा लेकिन ओके वो आड़े करे लगी। तो ये लिए जरूरी है कि देखा परिवार के टूटे से बचाओ के चाहिए। एकाकी जीवन जोन लोग जियत हुआ सोचत हुआ कि बहुत बढ़िया जियत है, देखा संयुक्त परिवार में भी कला है ना कि हम चल जाइला तो जो कहीं
1: हाँ
0: तो अंते, तो घरे के लोग भी वो कोई काम के संभार लेव ना,
1: पूरा पूरा भाई वहीं के फल
0: केहू
1: पर।
0: बीमार हो गया या खेती में ट्रैक्टर जोताई के
1: हाँ
0: बाद तो ना रहला तब वो काम हो गया। तो ई तरीके से जो ना कि संयुक्त परिवार जो ना भैया देखा चार ठे लाठी जहाँ रहले ना वहाँ देखा जो ना कि बढ़िया से काम होला,
1: ओकर वजन भी बढ़ा ले।
0: ओकर वजन भी बढ़ रही है। चार ठे फरसा लेके लोग कूद गए ना खेते में,
1: काम पता नहीं चले कब
0: तब
1: रायगल।
0: फूल डांड लाठ एकदम मार के चिकन कर दी। तो देखा ये लिए एकर महत्व बहुत ज्यादा है, आज भी एकर जरूरत है कि लोग संयुक्त परिवार में रहें।
1: हाँ आ सबका महत्व समझे। देखा
0: हाँ
1: संजू परिवार के जब बार बार नाव लेते हुआ मोहन भैया,
0: हाँ
1: तो मन देखा कोई बात पर मसला पर निर्णय ले होकर तो सब लोग बैठ करके
0: हाँ
1: एक साथ निर्णय ले ना, और
0: हाँ
1: सबके दुख सुख का समझना। लेकिन एक के बात है कि परिवार में चुगलाई ना हो,
0: हाँ
1: चुगलाई से
0: भाई
1: परिवार टूटला।
0: भाई देखा ये जितना भी नकारात्मक भाव रहला ना
1: हाँ
0: उसे परिवार ना समाज आ देश भी टूटा रहा। तो
1: हाँ
0: ऐसे हमन के बचे के चाहिए, आ परिवार में सबके लेके सबके सम्मान देते हुए आगे बढ़े के
1: हाँ आ
0: चाहिए।
1: सकरे सम्मान में अपन सम्मान समझा। उमर
0: हाँ
1: मतलब के भैया के सम्मान में तो हमारा ऐसा ऐसा
0: हाँ
1: बहन नहीं भाई, तब पे घर आगे बढ़ी,
0: हाँ
1: और घर आगे बढ़ी तो हमारे के समाज उन्नति करी।
0: एकदम सही बात कला सुमर भैया। देखा बातचीत हमन के आगे भी हुई,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पंच लोग के हाई संदेश सुनवा दल जाए।
1: सुनवा दा सुनवा दा।
2: इट्स अनदर सिक्स।
3: रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
4: कैश तो गया।
3: पेमेंट कैसे करेंगे?
5: टोकनाइज कार्ड से।
4: टोकन?
5: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षित,
4: ऑलराउंडर।
5: ओके बाय। RBI कहता है कि
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हाँ मोहन भैया,
0: हाँ समर भैया।
1: संदेश तो सुनवा देला है।
0: हाँ
1: आप बताओ पंच लोग क्या अपने पंचायती के माध्यम से क्या सुनाओ हुआ?
0: देखा सुमारू भैया ये कहम ना कि देखा लोग जो ना सोचन ना कि जो ना एक के फसल के बार बार बोई तो जो ना कि बहुत बढ़िया अनाज भी देखाई जो भावना
1: नहीं
0: है ना,
1: भाई तो फसल एक के
0: देखा तो पुरानी बात हो गई,
1: पुरानी बात हो गई तो खेत कमजोर हो जाएगी।
0: और दूसरा

0: बात यो है कि कुछ लोग के दिमाग में यह है कि रासायनिक खाद डाले ला खेते में तो उससे ज्यादा पैदावार
1: ना
0: हुई,
1: ना ये तो
0: तो इहो बात गलत है। आ देखा सही बात यह है ना कि भैया देखा फसल चक्र अपनाए करके आप खेते में देखा हरी खाद का प्रयोग जो ना कि करे के जरूरत हुआ, तो देखा यही पर जो है ना कि एक जो ना बतकई सुना देते ही फसल चक्र में हरी खाद का समावेश
1: बहुत
0: डॉक्टर
1: बढ़िया।
0: नलिन कुमार मिश्रा से अपने दिनेश कुमार सिंह भैया बतियोलिए हुए, तो सुना पंच लोग भी सुना कहाँ से देखा है गरीब समय भी चला था।
1: समय चला था
0: हाँ
1: सुमादा डॉक्टर नरेंद्र कुमार मिश्र जी, आप प्रोफेसर हुए टीडी कॉलेज जौनपुर में। आज हम आपसे फसल चक्र में हरी खाद के बारे में जानना चाहें कि हरी खाद के खेती में कितना उपयोग हो, कितना महत्वपूर्ण हो ये, और अगर हरी खाद करता है किसान भाई तो कौन कौन सी बात ध्यान में रखें।
2: देखिए किसान भाई, जहां तक हरी खाद की बात है तो ये जैविक विधियां जो हैं जिसके माध्यम से हमारे खेती या किसानी में किसान भाई करते हैं और मिट्टी की उपजाऊ बढ़ाते हैं, उपजाऊपन, तो ये जैविक विधि है जिसमें कुछ चयनित दलहनी फसलें होती हैं या कुछ अदलहनी फसलों को भी इसमें उगा सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे हमारे वृक्ष या पौधे भी होते हैं, झाड़ियां भी होती हैं जिनकी पत्तियां हैं, डंठल हैं, उनको भी मिट्टी में दबाया जा सकता है। तो हरी अवस्था में ही खेत में पलट करके जब मृदा में हम इनको दबाते हैं और उसमें पर्याप्त नमी रहती हो तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसमें अपघटन हो जाता है उसका, और इससे मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता में सुधार होता है। यह जीवांश खाद का सबसे सस्ता एवं सर्वोत्तम विकल्प है। साथ ही साथ हरी खाद के विघटन के पश्चात इसके जो पोषक तत्व तो हैं, इसके बाद उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनको प्राप्त होते रहते हैं। अब हरी खाद जहां तक इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसमें खेत में ही हम दलहनी फसल या कुछ और फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि है, उनकी बुआई कर देंगे और लगभग 40 दिन के पश्चात जब उनकी पुष्प की अवस्था आ जाती है उस समय खेत में पहले तो नमी देखना चाहिए कि भूमि में नमी होनी चाहिए, और एक पाटा चला करके रोटावेटर या मिट्टी पलट हल्के प्रयोग से इसको करके तुरंत उसको हम मिट्टी में ही पलट देते हैं और साथ में एक सिंचाई कर देंगे।
1: यानी जो हम
2: अब
1: पुष्पन वाली अवस्था हो
2: जी जी
1: वही अवस्था में।
2: हाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि अगर हमारी भारी मृदा है, यानी जैसे कि दोमट मिट्टी इत्यादि है, चिकनी है, तो उसमें 20 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी जुताई नहीं की जाती है। अगर बलुई भूमि है तो उसकी गहरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पोषक तत्व तो अधिक गहराई में पहुंच जाएंगे तो उसका लाभ तुरंत फसलों को नहीं मिल पाता है। हाँ, मृदा में जो दबाएंगे तो अपघटन में लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय आपको देना है। एक विधि और भी है इसमें, हरित पर्ण विधि, जिसमें कि आसपास की झाड़ियों या पेड़ों की कोमल पत्तियां, शाखा इत्यादि को मृदा में जुताई करके दबा देंगे। अन्य खेत में उगाई हुई हरी खाद को भी दूसरे खेत में दबा सकते हैं। इसमें जो वृक्ष हैं, पेड़ इत्यादि, उसमें सुबबूल, करंज, सदाबहार, अमलतास, इन सबों की पत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी धान के खेत में नीली हरी शैवाल या एक एजोला फर्न आता है, उसमें भी जब धान की खड़ी फसल हो और उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा हो, यहाँ तक कि जल भराव की स्थिति भी हो, तो इन दोनों को भी अगर प्रयोग करते हैं तो अच्छी मात्रा में हमारे खेत को नत्रजन की प्राप्ति हो सकती है।
1: जी, तो और कौन कौन फसल प्रयोग कर सकते हैं हरी खाद के लिए?
2: इसमें जहां तक फसलों की बात है तो मुख्य रूप से सनई, ढैंचा, बरसीम, ग्वार, लोबिया, मूंग इत्यादि तो दलहनी फसलें हैं, और इसमें सबसे ज्यादा लाभ ये होता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो हमारे वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करता है, और इसमें जो इन पौधों की जड़ें हैं इनकी गांठों में ये बैक्टीरिया रहता है और उसी में ये नत्रजन स्थिर हो जाती है। तो खेत में पलेवा के बाद आप बीज को छिड़क करके हल्की जुताई कर देंगे और हल्का पाटा लगा देते हैं। अगर मान लीजिए कि भूमि में पहले से बहुत कम उपजाऊपन है तो 15 से 20 किलो नत्रजन का प्रयोग भी किया जा सकता है, और इनसे जो है बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे हमारा नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम।

0: मैग्नीशियम है, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, ये सारी चीजें हमारे मिट्टी में प्राप्त होती हैं इस हरी खाद से।
1: जी,
0: अब इनके बीज में पहले तो ध्यान रखें किसान भाई कि 80% से कम की अंकुरण दर ना होनी चाहिए, उससे अधिक की ही हो, और साथ में प्रमाणित जगह से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बीज निगम के भंडार हैं हमारे यहाँ, कृषि विभाग के हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसके जो तरफ से जो बीज उपलब्ध होता है, या अन्य जो है प्रमाणित एजेंसियां हैं जिनका बीज लेकर के और उसको उगाया जा सकता है। सनई में जहां तक है तो उसके 50 से 60 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर में, ढैंचा में भी 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, बरसीम और ग्वार की फसल आपको लगानी है तो 20 से 25 किलोग्राम, उड़द मूंग 15 से 20 किलोग्राम, और लोबिया में 45 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर फसल चक्र की बात आप करें तो सिंचित क्षेत्र में मानसून प्रारंभ होने के लगभग 20 से 25 दिन पहले ही आप जो है ढैंचा है, सनई है या उर्द मूंग इत्यादि खेत में पहले से आप बो देंगे, और बोने के पश्चात जब लगभग 40 दिन की फसल हो जाती है, 1 से 1.5 फीट की फसल, तब उसको आप मिट्टी में दबाएंगे, और मिट्टी में दबाने के पश्चात तुरंत सिंचाई कर देंगे, और इससे जो है हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी। जब हमारी धान की फसल लगानी होगी उसके पहले ही हरी खाद पौधों को प्राप्त होने लगेगी।
1: जी। अच्छा, आप अभी सवाल और इस सब बात करते हैं,
0: हाँ जी,
1: थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं।
0: हाँ, अब देखिए जहां तक नीली हरी सहवाल या अजोला फर्न है, तो हमारे धान की फसल में लगभग 10 से 12 किलो पाउडर जिस समय हम धान की फसल लगा देंगे और उसकी रोपाई कर देते हैं, तो अक्सर जो है देखते हैं कि उसमें पानी भरा रहता है, उसी अवस्था में आप 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से पाउडर के रूप में ये आपको मिलेगा नीली हरी सहवाल, और उसका छिड़काव कर देंगे तो ये पूरे खेत को कवर कर लेगा, उसके पश्चात भी खेत में पानी रहना चाहिए। ध्यान रखें कि नीली हरी सहवाल जो है लगातार अगर 3 सीजन में आप ले लेंगे तो उसके पश्चात इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और नीली हरी सहवाल में लाभ ये है कि आप लगभग 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर नत्रजन तक की बचत जो है हमारे पौधों को हो जाती है। एजोला फर्न भी इसी तरह आता है, और ये भी जो है धान की फसल में ही विशेष रूप से उपयोगी है, और ये चटाई की तरह होता है, इसको भी धान के जहां पे जलमग्न स्थिति इत्यादि होती है वहां इसको लगा देते हैं। इसमें भी एक एनाबेना बैक्टीरिया होता है जो नत्रजन को यह भी जो है स्थिर करता है।
1: जो
0: और
1: चटाई की तरह बताओ था थी,
0: जी
1: पाउडर तरह वो थो है ना।
0: हाँ, पाउडर की तरह पहले ये आपका नीली हरी सहवाल, और ये जो है हमारा अजोला है ये हरा होता है, इसको खेत में लाके लगाना
1: तो
0: है।
1: पूरा फैल जाए खेत भर
0: जी,
1: में
0: पूरे
1: वो।
0: खेत में फैल जाएगा, और लगभग जो है 10 टन प्रति हेक्टेयर इसमें हरी मात्रा जो है हमारे खेत को प्राप्त होती है, अजोला से भी सहवाल से भी।
1: तो ये उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है।
0: हाँ जी, ये दोनों बहुत अच्छा है। रबी में भी कभी कभी जो है बरसीम या लोबिया जो है गेहूं या सरसों की फसल के पहले हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और ध्यान रखें कि हमें फूल आने के तुरंत जैसे फूल आ जाए उसके पहले ही ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं कि फूल आने के बस पश्चात, क्योंकि अगर अधिक रेशेदार हमारी फसल हो जाएगी तो उसको अपघटन होने में समय लगेगा और जो पोषक तत्व है वह भी कम प्राप्त होंगे। ग्रीष्म ऋतु में अगर आप सीधे सीधे फसल चक्र में ही उड़द या मूंग लगा लें और उसके पश्चात खरीफ की फसलें जैसे धान है या मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब लगा सकते हैं।
1: लेकिन ये ध्यान दे कि वो कम मुलायम अवस्था में ही,
0: हाँ जी,
1: वो कम मिलाने वो फली तोड़े की इंतजार न
0: नहीं,
1: करें।
0: लाभ तभी मिलेगा जब आप हरी मात्रा में अधिक से अधिक हरा जब रहे पौधा और कोमल रहे, यानी उसको सड़ने में भी अपघटन होने में भी आसानी हो, और अधिक से अधिक मात्रा में नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्राप्त हो सके।
1: जी। तो जैसे हरी खाद अगर करता है, मान लो सनई ढैंचा भी लोग करता है,
0: जी
1: तो थोड़ा सा ढैंचा के बारे में बताओ।
0: हाँ, ढैंचा जो है इसका पहले तो जो है आप इसमें लगभग 60 से 80 किलोग्राम जो है 1 हेक्टेयर में इसके बीज की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी बात ढैंचा के साथ ये है कि अगर आप ऊसर भूमि है यानी उसमें अधिक क्षारीय है तो भी उसमें ढैंचा लगाएंगे और आगे आने वाली धान की

0: फसल आप लगाएंगे वह भी काफी अच्छी फसल प्राप्त होगी।
1: अच्छा,
0: यानी ये भूमि शोधन का भी कार्य करता है ढांचा। जब आपकी फसल जो है लगभग 40 दिन की हो जाती है तब उस समय एक पट्टा लगा करके, और अगर आप इसको भूमि में दबा देंगे और पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव और नमी यानी सिंचाई इत्यादि कर देंगे तो बड़ी तेजी से यह जो है अवघटित हो जाएगा, और इससे भी लगभग जो है हमारा 60 किलो तक का नत्रजन जो है हमारे खेत को प्राप्त हो सकता है एक हेक्टेयर में।
1: अच्छा,
0: खरपतवार का ढांचा अगर आप खेत में दबाएंगे तो इससे खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है, इससे हमारी मृदा जो है भुरभुरी बन जाती है और उसमें जल धारण क्षमता यानी जल को रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है तथा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आ जाती है।
1: जी, तो हरी खाद का प्रयोग जो बाटे किसान भाई जरूर करनी चाहिए, विशेष के गर्मी में खेत खाली रहते हैं
0: जी,
1: तो एक सदुपयोग कर सकते हैं खाली खेत के, और जो आने वाली फसल उनके रहे बहुत बढ़िया हो जाए
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो हरी खाद फसल बाटे एक अगर चुनाव करते हैं तो और कौन कौन सा उनमें खास बात ध्यान?
0: हाँ, इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना होगा कि जिस फसल को आप लेंगे ये शीघ्र बढ़ने वाली फसल होनी चाहिए, यानी जिसमें तेजी से बढ़वार हो और आपका जो हरा पदार्थ जिसको आपको मिट्टी में दबाना है जल्दी प्राप्त हो सके। फसल में पत्तियों और शाखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए और प्रति हेक्टेयर अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलाया जाएगा। लगभग 15 से 25 टन एक हेक्टेयर के लिए हमें कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो हरी खाद के माध्यम से हमें इसको लेना है। फसल के वानस्पतिक भाग जो होते हैं वो काफी मुलायम होने चाहिए ताकि वो मिट्टी में आसानी से सड़ सकें मिल सकें। दलहनी फसल होने पे एक लाभ ये है कि दलहनी फसलों की जड़ों में जो राइजोबियम पाया जाता है वो वायुमंडल की नत्रजन को सीधे सीधे स्थिर भी करता है। तो एक तो आपके जो पौधे के भाग से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो होते ही हैं, साथ में ही जो ग्रंथियों में नत्रजन स्थिर होता है उसका लाभ भी आपको प्राप्त होता है। अगर फसल आपकी गहरी जड़ वाली होती है तो उसका विशेष लाभ होता है, उससे मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है। साथ में फसल चक्र का भी विशेष ध्यान देना होगा कि फसल चक्र में जिस समय खेत आपका खाली मिल रहा है उसी समय उसका उस हरी खाद की उस फसल का उपयोग करें, अन्यथा वो जो है आपके मिट्टी में मिलने में असुविधा होगी, दिक्कत आएगी
1: जी।
0: यदि और भी कम समय है तो आप जो है यही नीली हरी सहवाल या फर्न का प्रयोग खड़े फसल में कर लेंगे अपने धान इत्यादि में तो उसका ही बराबर का लाभ आपको प्राप्त होगा
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आज आप बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दें फसल चक्र में हरी खाद के प्रयोग के बारे में, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया,
3: हाँ सुमार भैया,
2: देखा हो कितना नगद के बत कही रहल कि फसल चक्र से में हरी खाद का समावेश कैसे करल जाए।
3: हाँ हाँ,
2: डॉक्टर नलिन कुमार मिश्र भैया से दिनेश कुमार सिंह भैया बतियाओ था
3: ना। कितना अच्छी अच्छी बात दिनेश भैया बतियाओ ना। हाँ, पूछना है कैसे जो है कि हरी खाद का प्रयोग करे किसान भाई लोग अपने खेत में अधिक पैदावार बढ़ा सके ना।
2: देखा अब चूके कहना चाहिए हो इतना बढ़िया बातचीत सुनने के बाद भी।
3: हाँ,
2: जे अभी भी थोड़ा सा टाल मटोल करता तो अब ढांचा सनई के जुगाड़ में लग जाए।
3: हाँ भैया, यह समय चला था।
2: हाँ कि नहीं?
3: हाँ,
2: अल्लाह करके छीट दे हो रहा है, इतना बढ़िया हो जाए, थोड़ा सा कौन डेढ़ फुट दूर मुलायम रहे, पत्ती अधिक आ जाए तो दबवा दें, बस बजा जाइए, अच्छा खाद हो।
3: एकदम सही कला भैया। देखा ये कुल जो ना कि देसी खाद हुआ। हाँ, अधिक जो ना कि पैदावार दे वाले खाद है सब,
2: ऐसे माटी भी अपन मजबूत हो जाएगी।
3: हाँ, लेकिन ये कहम ना कि सुमारू भैया,
2: भैया
3: की बातचीत खाली करता रहबा कि कुछ किसान भाई लोग के मन मनसान करीबा?
2: अरे भैया, मन मनसान हमें शहर तक गायित हो, लेकिन जगह सैल वाला सरकार गाँव तीन। हाँ, द्वार पूजा गीत पंच लोग सुने और वो सुन ले
3: सुनवा दा।

0: बाबा के द्वारा पर गमला का फुलवा जला,
1: हाँ
0: फुलवा फूलेला कचनार हे लाला। कितना बढ़िया ये द्वार पूजा गीत सहलवाला सरकार का होता है
1: हाँ देखा मन फरार हो गया। अभी कहब कि समारोह भैया
0: भैया।
1: कि कल जो कार्यक्रम होए वाला अपने पंचायती में ओकर भी जानकारी लगे हाथे किसान भाई लोग के दे देवल जाए।
0: ला सुनला, छ कल बिहने
1: हाँ
0: 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में दिनेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि उर्वरकों का उपयोगिता क्षमता बढ़ावल जाए।
1: अच्छा आ एक बात और बताई
0: का
1: कि
0: हो
1: देखा है जो कार्यक्रम चला था ना कृषि जगत
0: अच्छा
1: एहू में काल जो है कि बहुत मनोरंजक कवि गोष्ठी हुआ
0: अच्छा
1: लोक भाषा कवि गोष्ठी किसान भाई
0: अच्छा
1: लोग सुनिए आ प्रतिभागी कविगण होइया रंजना देवी आ गिरीश कुमार श्रीवास्तव।
0: तो कल सुने लोग
1: हाँ
0: और
1: सब लोग
0: साथ साथ
1: सुने।
0: में गौने भी होई
1: हाँ देखा एक से और बात कहम ना
0: का
1: कि
0: हो
1: देखा गर्मी का मौसम चला था आ कहीं अगर निकला ना तो गमछा वमछा बढ़िया से लेकर के पानी वानी ठंडा पी के तब जइया।
0: सही बात कहला भैया। कल गल की कुंजरे पेट में तरावट रही थे लू न मारी।
1: हाँ आ
0: हाँ
1: संगे संगे यो कहब कि देखा जितना भी कुल मौसम को जो फसल है घरी है ना
0: हाँ
1: जैसे ककड़ी खरबूजा बाय हिरमाना बाय ये कुल जो है कि पंच भाई लोग खात रहे ओकर भी देखा बड़ा
0: तरावट बना
1: असर होला
0: हुआ है।
1: तरावट
0: हाँ
1: पेट में बन रही है गर्मी का असर ना हुई।
0: आ देखा घड़ी घड़ी सारा का तो चले के बिला होता
1: हाँ तो पंच लोग से आज्ञा लेवल जाए
0: तो
1: तो
0: पंचो
1: पंचो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आओ प्यार करें। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाज़ थी कुमार सानू की। गीत लिखा था श्याम राज ने और धुन तैयार की थी आदेश श्रीवास्तव ने।

श्रेया घोषाल के गाए फिल्म एक्शन रिप्ले के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा। 2026 की परीक्षा, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा।

0: डीजल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय

0: के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उप क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
2: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

रवि के संगीत निर्देशन में आपने सुना शाहिर का लिखा गीत, आवाज़ थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था वक्त।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात का गीत। आवाज थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, मजरूह के बोल थे और आर डी बर्मन का संगीत।

खयाम के संगीत निर्देशन में अभी आपने शहरयार का लिखा गीत सुना। आवाज़ थी जगजीत कौर की और फिल्म का नाम था उमराव जान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेजाब का गीत। आवाज़ थी अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की, जावेद के बोल थे और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

त्रिशूल, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत? आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना शाहिर की थी और धुन तैयार की थी खयाम ने।

मोहम्मद रफी गाय फिल्म जिद्दी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत हमारे आज के कलाकार हैं अनूप चलूटा।

तेरी गली से हम जो अचानक गुजर गए, जो जख्म थे वो फिर से हरे हुए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत हमारे आज से कलाकार थे अनूप चलोटा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म दो रास्ते का गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर और उमेश गाय फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम रसमाधुरी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने

0: एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबूधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी

0: शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्य की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बजेन्द्र शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से

0: धन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold

0: Egypt. In the women's 75-kilogram category, Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17 Boxing Championships, Indian young boxers concluded the historic campaign today by winning 2 golds and 7 silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the Under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69-kilogram category snatch event by lifting 96-kilogram in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121-kilogram in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217-kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day-long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 IPS अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: Hormuz को फ्री ओपन और सिर्फ बनाए रखा।

0: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यागानगत का इयादा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निज़ाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इनमें तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू ज़ैबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान मुआहदा शामिल है। इस मुआहदे का मकसद भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के ज़खायर में यूएई की शराकतदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के दरमियान एक तवील मुद्दती LPG सप्लाई का मुआहदा तय पाया। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इसमें सनअती ताउन, बहरी सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में यूएई के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के CDAC और UAE के G24 के दरमियान 8 एक्जा फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबुधाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बाजाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अन्नयान बजात खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले में नेदरलैंड्स रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एग्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज को तकवीत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फरोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदु किया। ब्रिक्स के वज़ीरे खारजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहीं अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़ीरे खारजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज में ज्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक्वामी और कसीर रुखी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। इन वजीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक्वामी अमन व सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इकदामात पर जोर दिया। इन वजीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की जरूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़ीरे खारजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज और आबो हवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तहीं अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वजीरों ने आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए ज्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़ीरे खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामा निगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इक्तसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती, इख्तरा, इश्तराक और पायदार निज़ाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की सदारत के तहत तरजीहात की काफी सताइश की और अपनी हिमायत का इजहार किया। इस दौरान वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने

0: कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर जहती के हदफ की जानिब पेशकदमी में अपने सभी शराकत दारों के साथ काम करने के तई अहद बस्ता है। ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग 2026 के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में एक आम इजलास से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि मीटिंग की वसत इस अहम बात की जानिब इशारा करती है कि तेजी से बदलती दुनिया में सभी रहनुमा कसीर जहती तआवुन को मुस्तहकम करने से वाबस्ता हैं। डॉ जयशंकर ने मीटिंग के तनाजुर में ईरान, मलेशिया, युगांडा और क्यूबा के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत मगरबी एशिया में क़याम अमन के लिए और ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब अराक्ची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान सभी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुरमुज से होकर गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। जनाब अराक्ची ने कहा कि आबनाए हुरमुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया बहरान का मुज़ाकरात के जरिए तस्फिया करने के सिवा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान भारत के किसी भी तरह के तामीरी रोल का खैर मकदम करेगा। जनाब अब्बास अराक्ची ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक होने से मुतालिक मुबैना बेजाब्तगियों के मामले में कलीदी सरगाना को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद सरगाना पीवी कुलकर्णी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री मजमून का लेक्चरर है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहान के अमल में शामिल था। उसे सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमीन में 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सीबीआई ने कहा है कि सभी 5 मुलजिमीन को दिल्ली में मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें तफ्तीश के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील में ले लिया गया। नीट यूजी 2026 सवालिया पर्चा लीक मामले में दीगर कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ और मजीद कार्रवाई जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में पुट्टपार्थी के मकाम पर जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारा प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि नए शुरू किए गए दिफाई प्रोजेक्टों से कौमी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी, सनअती तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत के ताल्लुक से कई तरह के इकदाम का ऐलान किया है। इनमें वर्चुअल समात, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम शामिल हैं। मगरबी एशिया के बहरान के तनाजुर में ईंधन की खपत कम करने के लिए मरकजी सरकार की वसी तर अपील के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी जनरल भरत पराशर की जानिब से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि अब उन मामला की समात मजीद अहकाम तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जो ज़ेली दिनों में या जुज़वी काम के दिनों में ज़ेरे समात आने थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के सिलसिले में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। इनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल, साबिक डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी और साबिक डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। इन अफसरों को अपने फराइज में मुबैना तौर पर कोताही बरतने, मुतासरा लड़की के वालदेन को रकम की पेशकश करने और सरकार की मंजूरी के बगैर मीडिया ब्रीफिंग करने के तनाजुर में मुअत्तल किया गया है। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने नामा निगारों को बताया कि रियासती सरकार इन अफसरों के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी कराएगी। थाईलैंड ने हंता वायरस के फैलाव से मुतालिक बढ़ती आलमी तशवीश के दौरान इस बीमारी को खतरनाक मुतादी मर्ज करार दिया है। मुतादी अमराज से मुतालिक थाईलैंड की कौमी कमेटी ने सख्त इकदाम को मंजूरी दी है, जिनमें मुश्तबा मामलों की 3 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग, 12 घंटे के अंदर मर्ज की तशखीस और ज्यादा खतरा लाहक करीबी राबतों का 42 दिन का क्वारंटीन शामिल है। थाईलैंड की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क गिर सतह पर इजाफी निगरानी, लेबॉरटरी टेस्टिंग और इलाज मामले के प्रोटोकॉल नाफिज किए जा रहे हैं, जिनमें बैन अलावी एंट्री पॉइंट्स पर करीबी निगरानी भी शामिल है। हुकाम ने जानवरों के जरिए कुतरे गए लोगों या शदीद खतरात वाले इलाकों का माजी में सफर कर चुके लोगों को मशवरा दिया है कि वो तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसी अलामत नजर आने पर

0: तौर पर इलाज कराएं। भारतीय महकमे मौसमियात ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर में कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। इसके अलावा केरला, माहे, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरकी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें चार दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दो, चांदी का एक और कांसे के दो तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दोनों तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिरकुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिरकुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के दो और चांदी के सात तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबोहवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी का आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों कार्यक्रम अंजुमन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले अभी

0: तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।
2: सभी को अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य पत्रिका के इस माह के अंक में। इस अंक में सबसे पहले संपादकीय और आज का विषय है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। श्रोताओं, 18 मई को हर वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन हजारों शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने का है, जो दिन रात एक सुरक्षित और प्रभावी एड्स वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। साथ ही ये उन स्वयंसेवकों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने नैदानिक परीक्षणों में भाग लेकर मानवता को इस घातक वायरस से मुक्ति दिलाने की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वर्ष 2026 में हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान और तकनीक ने असंभव को संभव कर दिखाया है। पिछले 4 दशकों में HIV के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ने जहां संक्रमित व्यक्तियों के जीवन को सामान्य बनाने में मदद की है, वहीं वैक्सीन इस लड़ाई का अंतिम और निर्णायक अस्त्र मानी जा रही है। भारत की भूमिका इस वैश्विक मुहिम

0: में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मेक इन इंडिया और डिजिटल हेल्थ के इस दौर में हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल बुनियादी अनुसंधान में बढ़त हासिल की है, बल्कि कम लागत वाली दवाओं के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया है। आज ये जानना आवश्यक है, एड्स के खिलाफ लड़ाई केवल चिकित्सा जगत की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज भी समाज में इस बीमारी को लेकर फैली भ्रांतियां और स्टिग्मा सबसे बड़ी बाधा है। वैज्ञानिक प्रगति तब तक अधूरी है जब तक हम सामाजिक जागरूकता के स्तर पर इसे स्वीकार नहीं करते। शिक्षा और सही जानकारी ही वे दो हथियार हैं जो डर के अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अंत में, आज ये दिन केवल एक वैश्विक स्वास्थ्य दिवस मात्र नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास का प्रतीक है। वो दिन दूर नहीं जब विश्व इस अदृश्य शत्रु पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, सहानुभूति से भरा हो और जहां एड्स मुक्त भविष्य केवल एक सपना न रहकर हकीकत बने। श्रोताओं, स्वास्थ्य पत्रिका में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे पोषण की। पोषण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आहार विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल सिंह से बात कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: आंचल जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि पोषण, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कितना आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए।
2: पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए हवा और पानी जरूरी है, क्योंकि हवा और पानी के बाद जो हमारे शरीर की एक बेसिक जरूरत है वो पोषण ही है, जिसे हम भोजन के द्वारा डेली अपने आहार के द्वारा लेते हैं। तो उसमें हमारे कुछ फूड ग्रुप्स हैं, पौष्टिक तत्व हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन एंड मिनरल का नाम देते हैं, जिन्हें हम डेली बेसिस पे अपने डाइट के रूप में इनटेक करते हैं।
1: हाँ, वो चाहे हमारे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का, रात का भोजन हो, या दिन भर में हम जो चीजें खाते पीते हैं,
2: पूरे दिन भर का,
1: वो पूरी दिनचर्या हमारी एक तरीके से खाने पीने की,
2: सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का, इवनिंग का स्नैक्स और रात का खाना, और उसके बीच के कुछ छोटे मील्स होते हैं जो हम लेते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में या ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में पौष्टिक तत्वों के रूप में। इसी माह को पोषण माह भी हम कहते हैं। इसे हम पोषण माह के रूप में पूरा 30 सितंबर तक इसे हम मनाते हैं। लेकिन ज्यादा महत्व इसको इसलिए दिया गया है बिकॉज आज के टाइम में अभी फिर भी बहुत सारे लोग अवेयर हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, लोग खाने को सिर्फ और सिर्फ खाने के रूप में जानते थे, ये नहीं जानते थे कि उस खाने के रूप में उन्हें क्या चीजें मिल रही हैं। तो लोगों को इस चीज से अवेयर कराने के लिए कि वो एग्जैक्टली खाने के द्वारा किन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे कि उनके शरीर में किन चीजों की कमी या अधिकता हो रही है, जिससे कई सारे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि पहले के टाइम में आप माल न्यूट्रिशन को देखते थे, कुपोषण को और अधिक पोषण को देखते थे। तो ये बेसिकली इसी वजह से होता था क्योंकि लोगों के पास नॉलेज की काफी कमी थी कि किस चीज को कितनी मात्रा में लेना चाहिए जिससे कि उनका स्वास्थ्य बना रहे हमेशा।
1: देश में अभी भी जो वर्ग है उसमें युवा भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सभी लोगों को मिला करके एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जिसको नहीं पता है, वास्तविकता में उन्हें नहीं जानकारी है कि हमें क्या और कितना ग्रहण करना चाहिए हमारे भोजन के रूप में,
2: बिल्कुल,
1: और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या और किस तरह की कैसी होनी चाहिए। तो ये बताएं कि जो भोजन की थाली है, एक वयस्क के हिसाब से, एक युवा के हिसाब से या एक महिला के हिसाब से, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए उसके लिए।
2: जैसा कि आपने भी बोला, आज के टाइम में ये बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर उनकी थाली में कितना क्या होना चाहिए पता नहीं होता है। बेसिकली एक जो थाली होती है एक वयस्क के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसमें जो एग्जैक्टली होता है, उनके मैंने आपको 5 पौष्टिक तत्वों के जो नाम बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इनमें क्या होता है, इसमें 60% उनके जो थाली में होना चाहिए वो जो उन्हें एनर्जी जो उनकी बॉडी को मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है
1: जी।
2: उसके बाद का 15% प्रोटीन के माध्यम से मिलता है और बाकी का बचा हुआ माध्यम जो बॉडी एनर्जी लेती है वो फैट के माध्यम से लेती है। लोगों को लगता है कि लाइक दाल चावल रोटी सब्जी ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जो बेसिक एनर्जी हमारी बॉडी लेती है एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट से लेती है, लेकिन इनके चयापचय के लिए, इनके डाइजेशन के लिए और इनके मेटाबॉलिज्म के लिए, बेसिकली इन सारी चीजों के लिए, जो दो इंपॉर्टेंट मैंने लास्ट में बताया, विटामिन एंड मिनरल की भी जरूरत होती है, तो हमें उन्हें भी ऐड करना होता है। तो बेसिक एक जो थाली होती है उसमें आपका 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 15% हमारा प्रोटीन होता है और बाकी का बचा हुआ फैट होता है, और उसमें सैलेड एंड फ्रूट्स को जो हम ऐड करते हैं तो वो उनको पचाने में और उनकी चयापचय दर को बढ़ाने में मदद करते हैं।
1: आंचल जी, ये तो जो थाली का प्रकार है ये उनके लिए है जो
2: नॉर्मल
1: तरीके से अपनी जिनकी अर्निंग ठीक ठाक है, जो अपनी थाली को इस तरह से सुव्यवस्थित कर सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और बाकी सारी चीजें जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो भरपूर

0: मात्रा में उस थाली में हो।
1: जी,
0: एक औसत व्यक्ति के लिए अगर मैं बात करूं जो किसी तरह अपनी दिनचर्या जो है सुबह कुछ कमा के आता है और शाम में वो भोजन करता है, उस पैसे से प्रतिदिन उसको अपने भोजन का इंतजाम करना रहता है, उसके पास पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। और हम ऐसे अक्सर सड़कों पर देखते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनका शरीर औसत से ज्यादा मोटा है या भारी है, वजन है, और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनमें कुपोषण है, जो मल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी में इस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो हमारे घर में जो उपलब्ध चीजें हैं, जो दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, उनको हम किस तरह से अपने प्रयोग में लाएं कि हमारे जो भोजन की, जो पोषण की जो थाली है, वो पूरी मात्रा में हमें शरीर को हमारे मिले।
1: उसे भी करना बहुत ही आसान है। जैसे कि एक नॉर्मल, अगर मैं मजदूर की भी बात करूं, जिनके पास प्रॉपर दिनचर्या अपनी बिताने के लिए उतना सफिशियंट चीजें नहीं होती हैं, तो दाल चावल वो इजिली मार्केट से, उतना भी महंगा नहीं है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसीलिए लोगों को राशन देने
0: का, आज के समय में तो गरीबों के लिए निःशुल्क राशन योजना भी उपलब्ध
1: है। तो कार्बोहाइड्रेट की वो जो जरूरत होती है वो वहां से दाल और चावल से, क्योंकि सीरियल्स हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत माना जाता है, जितने भी अनाज होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है, तो रोटी और चावल के माध्यम से वो कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर वे में इनटेक कर सकते हैं। दाल भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, और जो नहीं भी करा पाती, तो लाइक जो इजी वे में है, कुछ चीजें हैं जो बहुत उतनी ज्यादा मार्केट में महंगी नहीं है, तो दाल के थ्रू वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। प्याज एक बेसिक है, लाइक आपके पास सलाद खाने के लिए प्रॉपर उतने पैसे नहीं है, तो प्याज को ही आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जियां हैं, उनको आप जो भी सीजन, मौसम के अनुसार जब भी हम कोई भी चीजें खरीदते हैं तो वो हमें उतनी ज्यादा महंगी नहीं पड़ती है। तो हमें जो मौसम में हमारे अवेलेबल चीजें हैं, अगर हम उनका भी इनटेक करें मौसम के अनुसार, तो हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चा जैसे ही जन्म लिया, धरती पे आया, तो उस समय क्या होता था, उसको माँ से दूर कर दिया जाता था, या शहद चटाने की प्रक्रिया या कुछ इस तरीके की क्रिया थी। लेकिन माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही पौष्टिक तत्व होता है, जो पीला दूध होता है। तो जो हमारी स्टार्टिंग है, पहला जो एक पौष्टिक तत्व है, जहां से शुरुआत होती है बच्चों की या एक उसके पोषण को पहुंचने की, वहां से ही हम चीजों को अगर कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो हम चीजों को समझेंगे कि पोषण कितना या पौष्टिक तत्व कितना हमारे जीवन के लिए, आगे के हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है।
0: अचल जी, विशेष करके जो महिला श्रोता हैं या जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के देखभाल की जो ज्यादातर जिम्मेदारी होती है वो माँ के ऊपर या घर की महिला सदस्यों के ऊपर होती है, तो ऐसे में महिलाएं काफी हद तक लापरवाह हो जाती हैं अपने भोजन को लेकर, और सबको परोसने के बाद जो बचता है किचन में फिर वो उससे काम चलाती हैं। तो महिलाओं को क्या संदेश होगा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ रह पाएगा। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें, आप अपनी लाइफ, ये नहीं है कि आप पहले उनको खाना खिलाने के बाद खाना खिलाएं, क्योंकि सबसे पहले आप सो के उठती हैं और सबसे लास्ट में आप सोने जाती हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले आप खुद को स्वस्थ रखें, तब अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और समय पे भोजन लें, सभी पौष्टिक तत्वों को अपने डाइट में ऐड करें, और सिर्फ अपने परिवार के उन सदस्यों में न उन चीजों को ऐड करें, अपने खुद के भी आहार में ऐड करें, और सो के उठने के 2 घंटे के अंदर में जरूर से नाश्ता करें, और लास्ट की जो उनकी मील हो वहां पे वो दूध जरूर से लें, जिससे कि उनकी दिन भर की जो दिनचर्या है, जो एनर्जी है, उनकी बॉडी को प्रॉपर वे में मिले।
0: निश्चित तौर पर महिलाओं के ऊपर जिस तरह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, एक छोटे से बच्चे से लेकर के और घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य तक की, तो उनके भोजन का, नाश्ते का प्रबंध करना और उसका ख्याल रखना, ध्यान रखना, ये एक महिला की प्रमुख जिम्मेदारी है घर में। आमतौर पर सभी घरों में ऐसा होता है, तो वहां पर महिला का अपने प्रति जो पोषण को, कितना पोषण उसको चाहिए, किस तरह का भोजन उसको चाहिए, वो कई बार लापरवाह हो जाती है। जो बातें आज आपने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई हैं, निश्चित तौर पर हमारे सभी श्रोताओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वो बहुत काम की बातें हैं। आप यहाँ आई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये तो बात रही पोषण से जुड़ी हुई, कितना आवश्यक है पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी थाली में कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी मात्रा शामिल होनी चाहिए, ताकि हम जिस तरह का कार्य करते हैं हमें उस कार्य के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सके, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे, बढ़ती उम्र में महिलाएं कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। डॉक्टर सुनीता सुमन से बात कर रही हैं पूर्णिमा सेन।
3: सखियों नमस्कार, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे, स्वागत है आप सभी सखियों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे, बढ़ती उम्र में महिलाएं कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनीता सुमन जी। आप वर्तमान में आयुर्वेद संकाय IMS BHU में स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

0: स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद पूर्णिमा जी, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: मैम, जैसा कि हमारा आज का विषय है, बढ़ती उम्र में महिलाएं कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान,
1: जी
0: तो हमारा जो आपसे पहला सवाल है कि बढ़ती उम्र में किस उम्र की महिलाओं को रखा जाए?
1: देखिए, जहां तक बढ़ती उम्र का सवाल है तो उसमें 40 वर्ष से लेके 55 वर्ष तक की महिलाओं को हम शामिल कर सकते हैं, और इसको हम 3 स्टेज में भी बांट सकते हैं कि प्री मीनोपॉजल स्टेज है, ये मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति की अवस्था है, और इसको हम प्री मीनोपॉजल स्टेज या मीनोपॉजल और पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं।

0: इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, स्टेज वाइज समस्याएं होती हैं, और ऐसे में ये प्रौढ़ावस्था को हम ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो है जो भी महिलाएं हैं घर की उन पर तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, तो
1: जी
0: उनमें बहुत से लक्षण हो जाते हैं। इस समय रजो निवृत्ति का यहाँ पर मतलब है कि उनकी मेंसेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो रही है या बंद हो गई है, या
1: जी
0: बंद होने के पश्चात जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे तात्पर्य है। और यह एक सामान्य अवस्था है, लेकिन यदि इसमें जो हार्मोन्स का चेंज हो रहा है, इसमें क्या है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका बदलाव होता है। जैसे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है 13 से 14 साल में या 10 से 14 साल की उम्र में, जब लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो हार्मोन्स का बदलाव होता है, वैसे ही जब मेंसेज जाता है, जब ये खत्म होने वाली होती है, तो उसमें भी हार्मोन्स का बदलाव होता है, और वो हार्मोन्स के बदलाव की वजह से बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत से लक्षण होते हैं महिलाओं में। यदि ये सामान्य अवस्था है, यदि इनको ध्यान में ना रखा जाए तो ये कई बार बीमारी का रूप भी धारण कर लेते हैं और उपद्रव हो सकते हैं।
1: जी
0: तो इन लक्षणों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये लक्षण है 40 से 55 वर्ष की में जब ये मीनोपॉज स्टेज आती है या प्री मीनोपॉजल है, तो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग का हम यहाँ पर कहेंगे कि जो मूड चेंजेज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, कभी तो वो बहुत खुश हो जाएगी, कभी उसको बहुत खराब लगेगा, तो इस तरह का मूड चेंज होता है। इसमें इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, और
1: जी
0: यदि हम इसमें देखें तो हॉट फ्लशेज होता है कि पूरे चेहरे से लेके गर्दन है, सीने में है, बहुत गर्म लगना, रात में स्वेटिंग हो सकती है, बहुत पसीना आ सकता है, और इसमें कंफ्यूजन बना रह जाता है, क्योंकि हार्मोन्स का जो बदलाव हो रहा है, सेक्स हार्मोन्स का भी हो रहा है, दूसरे जो हार्मोन्स हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं उनका भी बदलाव हो रहा है।
1: जी
0: तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जो उनको भूलने की एक बीमारी होने लगती है, अगर ध्यान ना रखा जाए तो ये आगे चल के बहुत बड़ी डिसीज का कारण हो सकती है, अल्जाइमर डिसीज वगैरह का कारण हो सकती है। इसके साथ साथ जो है बहुत तनाव हो सकता है वहां पर,
1: जी
0: अवसाद की जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो भी आ सकती है, जो बोन्स हैं उनका मास कम हो जाता है, बोन मास कम होने लगता है तो वो पतली होने लगती हैं या कमजोर हो जाती हैं, और
1: जी
0: ऐसी कंडीशन में क्या है कि उनके फ्रैक्चर के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: जी
0: और साथ साथ जो है कि जो एक ये अवस्था जो है, इसको हम ये भी अवस्था कह सकते हैं कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, यानी कि जो प्रजनन क्षमता है,
1: जी
0: वह भी खत्म होने लगती है, वह भी समाप्ति की ओर होती है।
1: जी
0: तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो एक तनाव होता है,
1: जी
0: और इसके साथ साथ जो है कि जो और तनाव है, जैसे कि सेक्सुअल डिजायर ना होना,
1: जी
0: तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, वजन बढ़ सकता है, वजन बढ़ने के साथ साथ जो है बहुत अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से जो है जो कंफ्यूजन है वो बहुत बढ़ जाता है, या बोलने में तकलीफ हो सकती है, कि जो अपना आत्मविश्वास है वो भी कम होने लगता है,
1: जी
0: कॉन्फिडेंस नहीं रह पाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो सकती हैं कि कब्ज हो सकती है या पेट का फूलना हो सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है,
1: जी
0: जब बोल रही है महिला तो उसमें क्या है कि वो रुक सकती है, कई
1: जी
0: बार उसको शब्द ही याद नहीं आते हैं, तो ऐसी कंडीशंस हो
1: ये सब
0: सकती
1: लक्षण
0: हैं।
1: से दिखते
0: हाँ, ये
1: हैं।
0: सारे लक्षण्स हो सकते हैं।
1: तो मैम, जैसा आप बता रही थी तनाव के बारे में, शरीर में हो रहे बदलाव के कारण या फिर बाहरी कुछ वजह के कारण तनाव होता है, तो तनाव तो सबके लाइफ में, सबके जीवन में एक पार्ट एंड पार्सल की तरह होता है, लेकिन क्या ऐसा कुछ किया जाए कि हम उस तनाव के असर को अपने ऊपर कम कर हो सके? कहने का तात्पर्य है कि जीवन शैली में किस तरह का बदलाव या फिर किस तरह का जीवन शैली रखा जाए। जी
0: देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, तनाव होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जब
1: जी
0: ये स्टेज आती है, जो प्रौढ़ावस्था की स्टेज आती है, मीनोपॉज की स्टेज आ रही होती है या आती है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो कई बार जब प्री मीनोपॉजल स्टेज होती है तो पेशेंट को ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है
1: जी
0: मेंसेज के समय पर, या बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, फिर दोबारा से हो सकती है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो सकती है, और मीनोपॉज में तो 1 साल तक अगर मेंसेज नहीं आता है तो उसको मीनोपॉज कंडीशन हम कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक तो उसके मैसेज की वजह से तनाव हो सकता है कि कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, इररेगुलर हो रहा है।

0: और दूसरा क्या है कि बार बार प्यास लगती है, क्योंकि इसमें जो है डिहाइड्रेशन की हार्मोन का हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं, बहुत खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पीना अच्छा नहीं लगता है कई बार, क्योंकि उसको पेट संबंधी समस्याएं होती हैं, तो बार बार प्यास लग सकती है, बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, तो वो भी एक समस्या है, वो भी एक
1: जी
0: तनाव का कारण होती है कि बार बार बाथरूम जा रहे हैं पेशेंट जो है, वॉशरूम जाती है। और
1: जी
0: तनाव के कारण है कि ये जो स्टेज होती है ये बिल्कुल मिडल एज जो हमारी प्रौढ़ावस्था है, इसमें
1: जी
0: हमारे बच्चों का करियर भी डिपेंड करता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो करियर की समस्या हो सकती है वहां पर कि बच्चों का करियर कैसा होगा, क्या है, और अपने में भी बदलाव आ रहे होते हैं, या कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं कि जिनके बच्चे इस समय पर 14, 15, 16, 17 साल के हैं, तो उनके बच्चों में भी बदलाव आ रहा होता है
1: जी
0: हॉर्मोन्स का, तो उनका बिहेवियर भी जो है वो चेंज हो रहा होता है बच्चों का।
1: जी
0: तो ऐसी कंडीशन में वो जो तनाव है, या फिर अगर उनके बच्चों की शादी है या
1: जी
0: उनका करियर है बच्चों का, तो
1: जी
0: ऐसी कंडीशन में जो महिला है वो तनाव ग्रस्त बहुत ज्यादा हो सकती है।
1: जी
0: तो ये जो तनाव है ये उसके शरीर पर और मन पर
1: जी
0: दोनों पर जो है वो प्रभाव डालता है, तो शारीरिक और मानसिक लक्षण उसमें पाए जा सकते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब इसका अगर आप कैसे कम करेंगे इस तनाव को,
1: जी
0: देखिए जो शादियां हैं जो करियर है वो तो आप कम नहीं कर सकते हैं कि
1: हमारे
0: उसके
1: हाथ में
0: वजह से,
1: कुछ
0: तो
1: नहीं
0: नहीं,
1: है
0: वो हमारे हाथ में नहीं होता है,
1: जी
0: वो बस हम ये है कि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं ऐसे में, लेकिन इसमें ये है कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने को बिजी रखने की कोशिश करें ऐसी कंडीशन में, उधर आपका ध्यान ही ना जाए जो आपके बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे में इस समय पर ठीक है कि आपकी काम बहुत है, थकान हो सकती है इस समय पर, तो आप बहुत भारी काम ना करें, लोगों की हेल्प लें, उनसे अपनी बातें जो आपके घर में हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उनसे शेयर करें, और कोई भी क्लासेज आप ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि आप इस समय पर आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो अपनी तरफ ध्यान देने की कोशिश करें, अगर आपका मन है, आपका इंटरेस्ट है, डांस क्लासेस कर लीजिए, म्यूजिक क्लासेस कर लीजिए, कुछ नहीं है तो अच्छी अच्छी मैगजीन्स पढ़ लीजिए, या फिर
1: जी
0: कहीं अपने जो है वॉक करने का, व्यायाम करने के लिए जो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, तो इस तरह की हैं, या फिर आप किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगे उनको ज्वाइन करिए, तो आपका तनाव कम होगा। सामाजिक, इसमें क्या है कि सोशल कट बहुत होने लगता है इस उम्र में,
1: जी
0: और वो जो सोशल कट है वो इस वजह से होता है कि हम बच्चों में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका करियर है, जब बच्चे बड़े होते हैं या उनमें चेंजेज आ रहे हैं, उन्हीं में अपने को
1: जी
0: बिल्कुल पूर्ण समर्पण उनमें कर देते हैं, लेकिन ऐसे में जब हम सोशल कट होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी सामाजिक जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे हम दूर होने लगते हैं, तो
1: जी
0: हमारी जो समस्याएं और ज्यादा बढ़ने लगती हैं, हम किसी को कह नहीं पाते हैं,
1: खुद का
0: तो
1: वजूद खोने लग
0: हाँ,
1: जाता है
0: खुद अपने को ये सोचते हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है।
1: जी
0: तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि सोशल कट नहीं होना है आपको, सामाजिक रिश्ते जो हैं वो बनाए रखने हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें बनाए रखना है उनको, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका।
1: जी मैम, तो मैम जो ये तो जीवन शैली की बात हो गई, अब खान पान में क्या शामिल किया जाए, क्या शामिल नहीं किया जाए, इसके बारे में भी थोड़ा
0: हाँ,
1: बताएं।
0: देखिए इतने सारे मैंने लक्षण आपको बताए, तो
1: जी
0: उसके हिसाब से जो है खान पान बहुत, जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है इस
1: जी
0: समय पे, उसी लाइफ स्टाइल को हमें मैनेज करना है, यानी कि जो हमारा आहार है, विहार है,
1: जी
0: मोड ऑफ लाइफ है, और जो हमारी डाइटेटिक्स जो होना चाहिए वो किस तरह के होना चाहिए, इसी पर डिपेंड करता है सारी चीजें। तो जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से जो समस्याएं हो रही हैं, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नियमित व्यायाम करें, योगा करें, क्योंकि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आप जो है वो एक्सरसाइज करने लगें, आप आधे से 1 घंटे जो है नियमित वॉक कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये सारा नियमित व्यायाम करें, पानी खूब पिए, प्यास तो लगती है, लेकिन ऐसे में क्या है कि जब हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं तो झुर्रियां आने लगती हैं, तो वो भी एक कारण तनाव का होता है, तो ऐसे में पानी खूब पिए, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा लें, और जो है फल, जो भी मौसमी फल हैं वो लें, इसमें क्या है कि कैल्शियम की कमी होने लगती है, जो हमारे एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी कमी होती है, और वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का काम करता है।

0: लेकिन वो तो कम हो रहा है, तो कैल्शियम भी तो एब्जॉर्ब उतना नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम रिच डाइट लें, दूध लें, दूध से बने पदार्थ लें, सोयाबीन लें, सौंफ लें। सोयाबीन और सौंफ का तो बहुत अच्छा एक काम और भी है कि ये फाइटोइस्ट्रोजेंस और फाइटोप्रोजेस्टेरोन्स इन सब का काम करता है। ये स्टडीज पूरी बताती है कि ये इनका काम करता है। तो जो भी इन हॉर्मोन्स की कमी की वजह से जो बदलाव हो रहे हैं, जो समस्याएं हो रहे हैं, उनको ये प्रॉपर करता है। इसके साथ साथ ही जो है मछली आप ले सकते हैं अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कॉड लिवर ऑयल यूज कर सकते हैं। जो नट्स हैं हमारे उनको ले सकते हैं, जैसे कि बादाम है, तो मूंगफली का तेल है, ये सब यूज करेंगे तो इससे क्या कि आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन रिच डाइट है। तो जितने आप मौसमी फल में जैसे संतरा है, मौसम्बी है, ये सारे फल्स ले सकते हैं, केला ले सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो। तो शुगर का भी ध्यान रखना है क्योंकि इस उम्र में हमारा जो मेटाबॉलिज्म, चाहे अपचयज की जो क्रियाएं हैं वो गड़बड़ हो रही है, तो शुगर बढ़ने के भी चांसेज हो सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो आपको लेनी है, लेकिन डॉक्टर से परामर्श भी लेना है। क्योंकि यदि प्री मेनोपॉजल कंडीशन है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, या ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि आप भूल जा रहे हैं, या आपको भ्रम हो जा रहा है, या आपको वर्बल कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बोल नहीं पा रहे हैं, या थकान बहुत ज्यादा है, ऐसी समस्याएं डॉक्टर से परामर्श जरूर लें कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हो सकता है वहां पर मेडिकेशन की जरूरत हो कि आपको मेडिसिन देना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो वो भी एनीमिक हो सकती है पेशेंट है। तो
1: जी
0: दूध है, मुनक्का है, छुआरा है, गुड़ है, भुना चना है, पुराना चावल है, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो ये सारा खान पान का ध्यान रखना होगा।
1: तो जो महिलाएं जो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने जाएं तो क्या-क्या चेकअप उसमें शामिल होना चाहिए?
0: देखिए, जब महिलाएं जाती हैं तो उनको अपनी सारी जो भी समस्याएं हैं वो डॉक्टर्स को बिना हिचक के, बिना हेजिटेशन के सारी समस्याएं बताएं। चाहे वो उनको एक विश्वास के साथ बताना होगा, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे उनको किस वजह से वो तनाव हो रहा है वो समस्याएं हों, या उनको जो सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है, संबंध नहीं बना पाती हैं, उसके बारे में भी बताएं। और साथ में ये भी बताना है उनको कि जो थकान हो रही है या जो प्री मेनोपॉजल वाली स्टेज है उनकी, तो उस समय पर ब्लीडिंग तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, या डिस्चार्जेज जो है वो किस तरह के हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जरूर हो सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब वो अपने डॉक्टर को बताएंगी तो उसमें जो चेकअप है वो डॉक्टर पे निर्भर करता है कि उनका जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन करे, और उसके साथ साथ किस तरह के काउंसलिंग वो डॉक्टर करता है ये तो उस पर निर्भर करेगा। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, तो डॉक्टर ये भी करा सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग का कारण जरूरी नहीं है कि मीनोपॉजी हो, कि प्री मीनोपॉजल स्टेट ही हो। ये भी हो सकता है कि उनकी जो यूट्रस है उसमें फाइब्रॉइड हो सकता है, गांठ हो सकती है, कहने का मतलब, और जो यूट्रस का माउथ है उसमें भी गांठ हो सकती है, और भी चेंजेज हो सकते हैं यूट्रस के भी, या और भी कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो वो जरूर बताएं, तो अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं।
1: इस उम्र में जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या गर्भाशय कैंसर होने की भी संभावना बहुत अधिक देखी गई है।
0: देखिए, ऐसा है कि अधिकतर क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ को तो अगर जल्दी मीनोपॉज हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसमें क्या करते हैं पेशेंट्स कि जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो हमारी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो दी जाती है। तो ये भी पेशेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि जो भी हमारे पास में महिलाएं आ रही हैं तो किसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से भी अगर हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाता है, या सर्वाइकल कैंसर भी जो है वो हॉर्मोन्स का बदलाव तो हो ही रहा है लेकिन वहां पर भी बहुत सारे चेंजेज हो सकते हैं, किसी तरह के इन्फेक्शन है वो है। तो उनके सबका जो है वो, इसलिए डॉक्टर्स का परामर्श बहुत जरूरी है। और टाइम टू टाइम जो है जैसे कि पैप स्मेयर जांच होती है वो कराते रहें, जो भी डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं जिस भी जांच के लिए, वो टाइम से कराते रहना चाहिए।
1: जी मैम, अब हमारी बहनों के लिए जो अपने उम्र के अलग पड़ाव पे

0: पड़ाव पे पहुंच रही हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए क्या कोई विशेष संदेश?
1: हाँ, मैं महिलाओं को तो कहूंगी ही कि वो कोई भी जो भी एक्टिविटी उनको अच्छी लगती है उसको ज्वाइन कर लें। म्यूजिक है, डांस है, जो भी उनको अच्छा लगता है, जिम जाना है, वो तो ज्वाइन करें। लेकिन मैं उनके घर के पुरुषों को भी ये सलाह देना चाहूंगी कि उनके पति हैं तो उनका बहुत ध्यान रखें। बच्चों को भी कहूंगी, क्योंकि ये जो बदलाव आ रहा है उनमें जो चिड़चिड़ापन है, तो इसमें जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, या कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं बोलती रहती हैं, या उनके पति भी कहते हैं कि अब तो ये बोलती ही रहती है, तो वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो महिला है उसमें भी बदलाव आ रहा है।
0: जी
1: वो भी अंदर से बहुत परेशान है अपने सिम्टम्स को लेके, लेकिन वो उजागर नहीं कर पाती है। तो उसके साथ प्यार से पेश आए, उनका बहुत ध्यान रखें, उनके खान पान का भी ध्यान रखें। जैसे एक माँ अपने बच्चे की 13, 14, 15 साल में बदलाव आते हैं उस समय बहुत ध्यान रखती है, वैसे ही बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी माँ का ध्यान रखें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें और हमारी सखियों को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद पूर्णिमा जी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान स्वास्थ्य, क्षमा कीजिएगा, स्वास्थ्य पत्रिका। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एकल तबला वादन। कलाकार हैं श्रुतिशील उद्धव। आज हमको सुनवा रहे हैं इनका तबला बजाया 3 ताल।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे एकल तबला वादन। कलाकार थे श्रुतशील उद्धव। आज आपने सुना इनका तबला बजाए राग तीन ताल। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second